एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। इस समय सवेरे के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश

0: दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

प्रभु नाम का जाप ही जीवन के सारे कोलाहल को समाप्त कर मन में शांति और एकाग्रता लाता है। जब मन की डोर ही उस परमेश्वर से जुड़ गई तो फिर भला कैसी अशांति।

हे प्रभु, मैं अकिंचन आपके गुण गाऊं, स्वीकार करना प्रभु मुझे जो कदाचित भूल कर जाऊं। एक तुम ही नाथ मेरे, तुम बिन शरण कहां मैं पाऊं, चरण अनुरागी बनकर जीवन सफल बनाऊं, भव सागर तर जाऊं।

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस आज सुनिएगा 298वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम 6:45 से इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा और किराना घराना। ये आज नई श्रृंखला

सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस आज सुनिएगा 298वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम 6:45 से इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा और किराना घराना। ये आज नई श्रृंखला शुरू हो रही है, पहली कड़ी आज से सुनिएगा कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, 8 से सुनिए समाचार प्रभात। सुबह 8:15 से त्रिवेणी और 8:30 से चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार सी अर्जुन पर और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 से। 10 से सेहतनामा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी सुनिएगा। सुबह 11 से रंग तरंग, 12 से हिंदी में समाचार, 12:05 से सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1 से सुरीला सफर और 2 से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण, 2:15 से दोपहर समाचार और दोपहर 2:30 का समय है सदाबहार नगमे कार्यक्रम का और 3 सखी सहेली कार्यक्रम के साथ सखियों का इंतजार होगा खत्म।

शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में अभिनेता जमील खान से बातचीत अनुराधा उपाध्याय की और इस कार्यक्रम के बाद 5 बजे से छाया गीत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तराने नए पुराने कार्यक्रम का समय 5:30 का। 6 बजे से हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 से संध्या रंजन, 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना पहली कड़ी। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। शाम 7 बजे से जयमाला।

शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस विवाह यंत्र इस प्रहसन की पहली कड़ी सुनेगा हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे से, लेखन NR टंडन का, निर्देशन मुख्तार अहमद का, 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या और 9 बजे से आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम संगीतकार सी अर्जुन पंत केंद्रित है ये कार्यक्रम। रात 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। रात 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि सुबह और रात्रि 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम में आज ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार सी अर्जुन पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रामचरितमानस और आज सुनेंगे कड़ी 298।

रावण का दूत शुक, जिसको उसने विभीषण के पीछे पीछे श्रीराम की सेना का भेद लेने के लिए भेजा था, लौटकर रावण को वानर सेना की विशालता और बल का विवरण देता है। उसने द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, शट, जामवंत आदि वीरों के अतुलनीय बल की झलक देखी थी और सहज ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। शुक ने रावण को वास्तविकता से परिचित कराने का भरसक प्रयत्न किया। वे करोड़ों शूरवीर रावण को सहज ही परास्त कर देंगे। सभी वानर समुद्र को सोख लेने या पर्वतों से उसे पाट देने को उतारू हैं। केवल राम की आज्ञा उन्हें नहीं मिल रही। स्वयं शुक तथा अन्य गुप्तचरों की भी उन्होंने मारपीट कर दुर्गति कर दी थी। वह तो श्री राम की सौगंध सुनकर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। शुक संवाद को रावण हंसकर टाल देता है, किंतु जब उसने लक्ष्मण का पत्र उसे दिया तो रावण एक बार भय से कांप गया।

श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा में किराना घराने का विशेष स्थान है। आज की इस श्रृंखला में हम जानेंगे इस घराने की गायकी की विशेषताओं और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले महान संगीत साधकों के बारे में। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा शास्त्रीय संगीत। वो चाहे उत्तर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो या कर्नाटक शैली का शास्त्रीय संगीत हो, और ये संगीत संरक्षित हुआ है, सहेजा गया है गुरु शिष्य परंपरा से, और शास्त्रीय संगीत की इस धरोहर को संवर्धित किया है, आगे बढ़ाया है, इसे निरंतर रखा है घरानों ने। और इसीलिए इस श्रृंखला का शीर्षक है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी को,
2: जो हमारी अपनी आकाशवाणी परिवार के सदस्य हैं, आकाशवाणी पणजी से उद्घोषक के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, और मूर्धन्य शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर गंगूबाई हनगल की शिष्या हैं, और डॉक्टर शकुंतला भरणे आकाशवाणी की अश्रेणी की कलाकार हैं।
1: शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद जी।
1: डॉक्टर शकुंतला भरणे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं श्री रोहिदास परब। रोहिदास जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में। और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री ऋषित होनावरकर। ऋषित जी, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। शकुंतला जी, ये जो हमारा शीर्षक है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, इस शीर्षक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपने ये शीर्षक चुना है?
3: किराना घराना जी स्वर प्रधान घराना है, और मैं रही किराना घराने की गाने वाली
1: जी जी,
3: यानी मेरी गुरु जी पद्म विभूषण डॉक्टर गंगूबाई हनगल, उससे पहले पंडित रामराव नायक, जो पंडित फिरोज दस्तूर के शिष्य थे।
1: अच्छा,
3: मेरी शुरुआत ही किराना के स्वर से ही हुई है।
1: संगीत की परंपरा में ये घराने जो हुए हैं, कितने अलग अलग घराने हैं, इनकी शुरुआत कब और कैसे हुई?
3: संगीत के बहुत सारे घराने हैं, लेकिन मुख्य घराने चार ही है, ये तो हम जानते हैं। अभी देखो, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा से विकसित विशिष्ट गायन या वादन को घराने की शैली।
1: जी, जी।
3: सबसे पुराना घराना जो है वो ग्वालियर घराना है।
1: अच्छा।
3: आगरा घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना और किराना घराना।
1: जी।
3: उसके सिवाय और भी पतियाला घराना, रामपुर घराना, रामपुर सहसवान घराना, भिंडी बाजार घराना, मेवाड़ती घराना, बनारस का घराना, बहुत सारे, इंदौर घराना आमिर खान जी का, और ये सब बहुत सारे घराने हैं। लेकिन मुख्य चार क्यों है कि उनकी परंपरा चालू है।
1: अच्छा।
3: ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना ऐसा माना गया है। ग्वालियर घराने में हिंदुस्तानी ख्याल गायकी का सबसे बड़ा ये प्राचीन घराना है।
1: अच्छा।
3: तानसेन से टाइम से वो आज तक चालू है, ऐसा बोलते हैं। सरल और शास्त्र सम्मत प्रस्तुत

0: शक्ति इसकी विशेषता है।
1: अच्छा,
0: सुबोधता, सुगमता, शास्त्र को एकदम ऐसा स्मूथली लेकर आगे जाना, ये ग्वालियर की खासियत है
1: जी।
0: अब हम सुनेंगे आगरा घराना क्या है। आगरा घराना दमदार आवाज,
1: अच्छा,
0: बोल बाट लहकारी, ध्रुपद अंग, ये सब आगरा की खासियत है। आगरा वाले थोड़ा टेक्निकल रहते हैं,
1: अच्छा,
0: तांत्रिक रहते हैं, यानी ताल के साथ खेलना,
1: अच्छा,
0: इस पर उनका कटाक्ष रहता है। अभी जयपुर घराने के बारे में सुर और ताल दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। जटिल रागों की निवड़ करना, बौद्धिक विचार करना
1: जी,
0: और तान प्रकार भी थोड़ा सा जटिल पेचीदा होता है।
1: अच्छा,
0: इसमें जयपुर गायकी में, और गायकी बहुत अच्छी है, बौद्धिक है। वैसा हमारा किराना घराना जो है
1: जी,
0: वो एकदम स्वर स्वर प्रधानता वहाँ है
1: जी,
0: स्वर शुद्धता, श्रुति का सूक्ष्म प्रयोग, मेंड और विलंबित लय में राग विस्तार, इसकी प्रमुख विशेषता है
1: जी।
0: सुर के लगाव में अचूकता, इसीलिए जयन जी किराना घराने का एक ब्रीदवाक्य है।
1: अच्छा,
0: सुर गया तो सिर गया, ताल गया तो बाल गए। किराना घराना कैसा कब शुरू हो गया, उसको किराना कैसा नाम पड़ गया
1: जी।
0: किराना अथवा कैराना,
1: अच्छा,
0: सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है।
1: अच्छा,
0: इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं। कोई ऐसे भी कहते हैं कि महाभारत कालीन दानवीर राजा, हम तो जानते हैं दानशूर कर्ण का आपने सुना है, कर्ण की नगरी को कर्ण नगरी कहते थे।
1: अच्छा,
0: और उनका जो अपभ्रंश हो गया वो किराना हो गया।
1: अच्छा,
0: कर्ण
1: अच्छा,
0: नगरी का अपभ्रंश। और एक बात भी है
1: जी,
0: यूपी के किराना सहरानपुर के एम्परर जहांगीर जो थे राजा, बहुत सारे म्यूजिशियन को उन्होंने रिसेटल किया।
1: अच्छा,
0: रिसेटल यानी तब बाढ़ आई थी और उसके कारण लोगों के घर नहीं थे, घर जमीन दोस्त हुए थे, और कुछ सारंगी वादक, कुछ सतार वादकों के लिए उन्होंने घर बांध के दिया
1: जी,
0: वो उसी गांव में दिया।
1: अच्छा,
0: और इसे प्रस्तापित किया उधर। हमारे किराने घराने के प्रवर्तक खान साहब अब्दुल करीम खान
1: जी,
0: उन्होंने लिखे रखा है कि जिसको हम कुरुक्षेत्र कहते हैं उस शहर का नाम किराना है।
1: अच्छा,
0: अर्थात वो राजा कर्ण का या हुसैनपुर और किराना में 20 मील का अंतर है दोनों गांव में।
1: अच्छा,
0: किराना का मैं यानी खान साहब रहने वाला हूँ, मैं वो किराना गांव के है, और खान साहब बंदे अली भी किराना घराने के रहने वाले हैं। बंदे वाली मालूम है ना, बंदे अली खान यानी वो बिनकार, बिनकार बंदे अली खान कहते हैं, उनके घराने से ही हमारा घराना ताल्लुक रखता है
1: जी,
0: कि वो रुद्र वीणा बजाते थे।
1: अच्छा,
0: बंदे अली खान
1: जी,
0: वो भी उसी गांव के है, इसीलिए कहते हैं कि वो घराना बंदे अली खान से उधर से ही आया है।
1: अच्छा,
0: किराना घराने के बारे में बहुत सारी दंतकथा भी मिलती है। एक प्रसिद्ध दंतकथा संक्षिप्त में आपको बता दूं
1: जी,
0: राजा मानसिंह ग्वालियर के दरबार में नायक ढोंडू और नायक मन्नू थे। नायक यानी प्रतिभावान, सृजनशील
1: जी।
0: नायक ढोंडू कृष्ण भक्त थे बहुत ही। उन्होंने वृंदावन में जाकर तपश्चर्या की और साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए।
1: अच्छा,
0: और तुम्हें क्या वर दूं ऐसा उन्होंने पूछा।
1: अच्छा,
0: तब ढोंडू नायक ने कह दिया, क्या कह दिया, तुम्हारे बांसुरी के स्वर मेरे गले में दे दे।
1: ओहो,
0: नायक ढोंडू और नायक मन्नू, यह घराने की शुरुआत उनसे हो गई,
1: वहां से हुई।
0: और कुछ लोग इस गायकी का संबंध गोपाल नायक से जोड़ देते हैं। नियाज अहमद, फैज अहमद, खान साहब किराना घराने का परंपरा का नायक बैजू बावरा, उसी संबंध से ये यहाँ मानते हैं। किराना घराने के वंश परंपरा में दो मत प्रवाह है
1: जी।
0: पहला, किराना घराने की गायकी वंश परंपरा को जिनको मिली है वो मशकूर अली खां, आपने नाम सुना होगा, मशकूर अली खां, और उन्होंने अपनी परंपरा के अपने जो संकेत स्थल है उधर सब दे दिया है।
1: अच्छा,
0: दूसरा जो है अब्दुल करीम खान साहब का, जिसे हम हमारे घराने के प्रवर्तक कहते हैं, लेकिन उससे पहले भी किराने घराने का बहुमूल्य योगदान दिया गया है, यानी कितने सालों से पहले आप सोच सकते हैं
1: जी जी जी।
0: पहली शाखा तो हो गई, और शुरू का जो ढोंडू नायक थे वो 1456 थे, बाद में गांजी खां 1656,

0: रहमत अली खां 1748
1: जी,
0: वाजिद अली खां और काले खां का तो साल नहीं मिला, अब्दुल करीम खां 1872
1: जी,
0: सुरेश बाबू माने और बाद में सवाई गंधर्व, उसके बाद तो सबको मालूम है,
1: मालूम हाँ। जी।
0: उसके बाद डॉक्टर गंगूबाई हनगल, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित फिरोज दस्तूर, पंडित सवाई गंधर्व का ये शिष्य परिवार है
1: जी।
0: सुरेश बाबू माने का शिष्य परिवार उससे पहले वहीद खां और अब्दुल करीम खां
1: जी, जी।
0: वहीद खां के शिष्य सुरेश बाबू माने हीराबाई बड़ोदेकर और जिसके गुरु
1: हाँ।
0: अब्दुल करीम खां के इससे जो आए हैं वो हीराबाई बड़ोदेकर का प्रभा अत्रे, मानिक वर्मा, वामनराव देशपांडे, बसवराज राजगुरु, ये सब वहीद खां की परंपरा से आए हैं
1: जी जी जी।
0: उसके बाद जो आया है तो हमारा गंगूबाई हनगल के सारे शिष्य
1: हाँ जी।
0: उनकी बेटी कृष्णा हनगल, पंडित नागनाथ वडेर
1: जी,
0: सुलभा निरलगी थी, अशोक नाडगिर है और मैं डॉक्टर शकुंतला भरणी उनकी शिष्य, फिरोज दस्तूर के भी शिष्य है अच्युत अभ्यंकर
1: हाँ जी,
0: सुधा देवेकर, मिलिंद चित्ताल, गिरीश संसगिरी, उषा देशपांडे
1: जी,
0: और अब रहे हमारे मास्टर पंडित भीमसेन जोशी का शिष्य परिवार
1: जी,
0: माधव गुड़ी, आनंद भाटे, श्रीकांत देशपांडे, श्रीनिवास जोशी, उपेंद्र भट्ट, नाम का लिस्ट तो बहुत बड़ा है
1: जी।
0: आजकल के गायक में कैवल्य कुमार गुरव, पंडित जय तीर्थ मेउंडी, वो तो आपको पता है, आज भी किराना घराने का जो सुर का लगाव है वो ऐसा ही है, सब घरानों के लोग किराना घराना का सुर पकड़ के ही आगे जाते हैं।
1: अच्छा,
0: ये घराने का सुर का एक अलग ही
1: क्या बात है, ये है। जो अनूठी परंपरा है, हमने नाम भी वैसा ही दिया कि अनुपम परंपरा तो इस परंपरा के बारे में और विस्तार से हम अगली कड़ियों में सुनेंगे।
0: बहुत सारी चर्चा है
1: जी,
0: और आज तो हमने बहुत बात की है इसके बारे में, लेकिन स्वर क्या है, इसका महत्व क्या है, ये समझने के लिए सुर संगम का एक बहुत ही प्यारा गाना है,
1: आए सुर के पंछी आए
0: हाँ।
1: आइए सुन
0: हम सुनेंगे।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में के लिए क्या आवश्यक है? आपने ठीक समझा, इसके लिए आवश्यक है पौष्टिक भोजन, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा उसके विकास और कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। यदि हमारा भोजन संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर होगा तो हम अनेक बीमारियों से बचे रह सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज हम आपसे अपने कार्यक्रम में यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह।

0: अपने देश में प्रत्येक वर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रेरित करना है। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामाजिक संस्थानों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: अंडा, अंडा, अंडा, अंडा, हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है, ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है। जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। पौष्टिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होता है। अनाज, दालें, दूध, हरी सब्जियां, फल, मेवे और अंकुरित अनाज पौष्टिक भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं तथा हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं।

नियमित रूप से पौष्टिक भोजन करने से शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ रहता है। इसमें कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है तथा एकाग्रता में सुधार होता है। पौष्टिक आहार हमें अनेक बीमारियों जैसे कुपोषण, एनीमिया, मधुमेह, हृदय रोगों से बचाने में भी सहायक होता है। आज के समय में जंक फूड और तेलीय भोजन का प्रचलन बढ़ रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें हरी सब्जियों, फल, दालें, दूध, अनाज और अंकुरित खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए और आने वाले मेहमानों को भी पौष्टिक आहार कराना चाहिए।

श्रोताओं, अच्छी पोषण डाइट या संतुलित आहार से तात्पर्य एक ऐसे खान पान से है जो शरीर को स्वस्थ रखने, ऊर्जा देने और बीमारियों से बचाने के लिए सभी जरूरी पोषण तत्व मात्रा में प्रदान करता है। एक अच्छे पोषण वाले आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और पानी शामिल होते हैं। हमारे भोजन में लगभग 50-60% कार्बोहाइड्रेट, 10-15% प्रोटीन और 20-30% स्वस्थ वसा होनी चाहिए, तभी हम दिन भर ऊर्जावान व स्वस्थ रह सकते हैं।

यह सप्ताह हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति संतुलित आहार अपनाए तो कुपोषण जैसी समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देना भी है। इन्हीं बातों के साथ आज का नमस्कार अलवर कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए हमें आज्ञा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपका दिन मंगलमय हो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

0: युगल आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी ने, संगीत दिया था रवि ने और फिल्म थी दो कलियां।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप किशोर कुमार को सुन रहे थे फिल्म कुदरत में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत था, आर डी बर्मन का संगीत।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म बैराग में। आनंद बख्शी का लिखा गीत था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर को फिल्म राम तेरी गंगा मैली में। इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन

0: शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बीसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास

0: के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
3: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
4: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
5: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंद्र के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। काशदास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी

0: बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8%, पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। डीजे पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए गुलाम अली की गाई गजलें।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई गजलें। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज NCERT के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
0: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी, कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामथारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं,
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
0: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग।

0: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
1: जी जी जी श्रोताओं, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
0: श्रोताओं, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
1: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े क्या जवान क्या बच्चे सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
0: उन्होंने भीड़ पर

0: what do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माई नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों एक गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को

0: ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
0: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you! Happy birthday to you, Stephen! Thank you, John. Thank you so much. Hi, Martin. How are you?
3: Oh, fine.
2: Thanks for coming in. Please come in.
3: Yes, why not?
2: Come. John, please come here.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh!

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से

0: वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, वाह अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
3: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। People like me can now move around independently, and they can communicate.
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग

0: जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
1: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
3: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग ना होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जाँच आज की जाएगी और राज्य में कच्चे तेल का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 80,000 बैरल प्रतिदिन किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। एससीओ बैठक में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

0: कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: देश भर में आज से स्वच्छता पखवाड़ा 2026 शुरू हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग होने वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उर्वरक विभाग के अनुसार इस राष्ट्रव्यापी अभियान का लक्ष्य भौतिक और डिजिटल दोनों कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाना है। इस वर्ष भौतिक स्वच्छता के साथ डिजिटल स्वच्छता और अभिलेख प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन कल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात की। इस दौरान आयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। श्री जैन ने आयोग की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा संघों के साथ हुई बैठकों की जानकारी दी। बैठक में आयोग के सामने महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य का दृष्टिकोण साझा किया गया। बैठक में HCM रीपा की महानिदेशक श्रेया गुहा भी उपस्थित रहीं। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज से विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर जल सुरक्षित भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। सम्मेलन में जल अवसंरचना परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण में जन भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही पेयजल स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन 2 के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर चर्चा होगी। इस दौरान राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारी अपने अनुभव और बेहतर कार्य प्रणालियां साझा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। निर्वाचन विभाग के अनुसार 10,245 वार्डों के लिए करीब 21,000 से अधिक प्रत्याशियों ने लगभग 26,500 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 3 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन के अंतिम दिन कल विभिन्न नगर निकायों में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। टिकट वितरण को लेकर कुछ स्थानों पर गतिरोध भी सामने आया। निकाय चुनाव के लिए 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। जयपुर में आगामी त्योहारों और नगर निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के दौरान शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ नगर निकाय चुनाव की मतगणना भी होगी। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
2: सबसे पहले जन्माष्टमी 4 तारीख की है। जन्माष्टमी के लिए यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण प्रबंध किया गया है और इसके लिए हम जो यातायात जिन जिन मार्गों पर रूट डायवर्ट करेंगे उसकी पूर्व सूचना सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से आम जन को दे दी जाएगी। 14 तारीख को गणेश चतुर्थी है और उसी दिन निकायों के चुनाव की मतगणना भी होनी है, परंतु गणेश चतुर्थी के अवसर के ऊपर जेलन मार्ग पर रूट डायवर्शन किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में भी पूरी व्यवस्था

0: जाइए आने वाले दोनों त्योहार और इलेक्शन के लिए अभी जो हमें पुलिस बल हम लगाएंगे उसके बारे में अभी तैयारियां चल रही है और पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
1: प्रदेश में कच्चे तेल का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 80,000 बैरल प्रतिदिन करने की तैयारी है। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कल सचिवालय में पेट्रोलियम और सीजीडी सेक्टर की प्रगति समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। श्रीमती अरोड़ा ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में रोजाना करीब 52,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न बेसिनों में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में उत्पादित कच्चे तेल का राजस्थान रिफाइनरी में ही परिशोधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 60 नए सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 23 चालू हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर रवि सिंह शेखावत ने बताया कि बारिश के बाद मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं की ओर से घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है।
2: फील्ड स्टाफ है, उसमें डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स भी लगाए गए हैं और आशाएं एएनएम से ये घर घर जाके परिंडे हैं जहां पे बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है या मच्छर जनित जो रोग हो सकते हैं संभावित क्षेत्र, वहां पे जा जाके सर्वे भी कर रहे हैं और लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं। इसके अलावा उचित मात्रा में दवाइयां एवं एंटीलारवल एक्टिविटी के लिए जो अपने को केमिकल्स की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें उपलब्ध है। बच्चे और गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, तो ये लोग हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज के लिए और अपने खान पीन का ध्यान रखें और चिकित्सा परामर्श लें यदि किसी तरह की कोई तकलीफ होती है तो।
1: दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 39 वर्षीय मेसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी और पुष्टि की कि फुटबॉल इतिहास के सबसे गौरवशाली अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अब वो अर्जेंटीना की जर्सी में नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया है। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वीं शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जाँच आज की जाएगी और राज्य में कच्चे तेल का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 80,000 बैरल प्रतिदिन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
4: ये जो दीवारें खड़ी करना है इसे
5: अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बातें कर रहे हैं पौष्टिकता की या कहें राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह के

मौके पर हम बात कर रहे हैं अपने जीवन में पौष्टिकता हम कैसे ले आ सकते हैं खान पान में, और किस तरह से जो चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है उन्हें अपने खान पान से दूर कर सकते हैं। तो जब भी हम डाइट करने का एक फैसला करते हैं तो एक मौके पर जाकर हमारा मन हमें वापस उस ओर ले जाना चाहता है जहां से हम किसी तरह निकल के आए, लेकिन ऐसे वक्त में हमें जमे रहना है।

पर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज में, अमित त्रिवेदी का संगीत लुटेरा फिल्म के इस गीत में। और जब भी हम कदम बढ़ाते हैं स्वास्थ्य की ओर तो कुछ इसी तरह से मन गुनगुनाता है और जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत बदलाव आ गया है। शरीर भी हमें हल्का लगता है, चेहरे पर अलग से चमक आ जाती है, लेकिन इस ओर बढ़ने के लिए ऐसा लगता है जैसे लुटेरा फिल्म का गीत था, लगता है कि हमारी सारी खुशियां ही लुट गई हैं, कुछ भी हमें खाने पीने नहीं मिलता। पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं ये अगर हम सोचें तो एक बड़ा बड़ा जो हम कदम उठाते हैं ना, बड़े बड़े फैसले लेते हैं कि आज के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाएंगे, मिठाई को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और इस तरह के जब बड़े बड़े हम फैसले लेते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमें ज्यादा लगने लगते हैं, दबाव लगने लगता है कि क्या करें। इसलिए जब हम जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। स्वास्थ्य की ओर भी इसी तरह से आप छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप इन कदमों के जरिए ही एक बड़ी मंजिल को पा भी सकते हैं। तो छोटे कदम क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटा कदम तो ये हो सकता है कि आप भोजन में नमक और शक्कर की मात्रा धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। तो इससे आपका जीवन तो बदलाव आएगा ही आपके जीवन

श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे समीर के बोल, इलैयाराजा का संगीत चीनी कम फिल्म के इस गीत में। और आप भी सोचिए कि आज से अपनी चाय कॉफी में लेंगे चीनी कम और रखेंगे अपने स्वास्थ्य का ख्याल, साथ ही बनेंगे अपने ही स्वास्थ्य के नजरबट्टू।

तो आज से रखेंगे अपना ख्याल और अपने स्वास्थ्य के ख्याल, इसी वादे के साथ करते हैं आज के इस कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी मां।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीतबद्ध गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आनिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
2: भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
0: आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।
6: अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या, वो दो तरह से होती हैं। एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। दूसरा, जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में।

0: इन दोनों को रोका जा सकता है, इनका कोई उपाय है या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
1: एक भ्रम है लोगों में,
0: अच्छा,
1: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है।
0: ओके।
1: ये भ्रम, अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए, हो सकता
0: है? नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
1: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
0: ओके।
1: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह होता है, सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। स्टेज वन, स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देने होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चांद है,
0: बहुत बड़ा चांद है, सिर पर बहुत बड़ा चांद
1: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: जी जी जी, ओके।
1: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है,
0: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये है कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाए,
1: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
0: जी,
1: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
0: राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं, इसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले, और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
1: चाहेंगे। तभी तो उससे विज्ञापन का ध्येय है। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
0: हाँ, कि ये रिचनेस आती है, फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है, या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
1: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है, इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है, इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है, अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
0: जी जी,
1: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
0: झाग ज्यादा है तो अच्छा है,
1: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का, हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
0: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा, उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी, ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह, झाग वाला शैम्पू है।
1: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे, और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
0: जी,
1: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
0: चले जाएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
1: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
0: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो,
1: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है, कोकोनट ऑयल। से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है। तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना, वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से।
0: ओके।
1: तो ड्राई नहीं होते हैं,
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है।
1: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए। भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर

0: मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर, मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं, इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए, उसको बोलते हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है, वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है।
1: ओके,
0: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है।
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि

0: हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के ही शैम्पू करते थे बचपन में.
1: बिल्कुल
0: एक क्या बोलते हैं, एक
1: रूल
0: माहौल
1: था.
0: रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे. रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे है जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
1: हाँ जी,
0: वो तेल से मेंटेन रहती है.
1: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी परंपरा कितनी साइंटिफिक है.
0: साइंटिफिक, तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था. तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं, तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है.
1: जी
0: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है
0: इकोसिस्टम के हिसाब से. अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने, इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
1: रूखे हो जाते हैं.
0: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहते हैं, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए. लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है, तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है. तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं. तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है.
1: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए.
0: हफ्ते में 2 से 3 बार.
1: ओ,
0: आप शैम्पू तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर ही रहे हो. और बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल.
1: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
0: देखो सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है. आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया, तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला.
1: जी वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा इकोसिस्टम,
0: ये होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए.
1: जी बिल्कुल.
0: दूसरा मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है.
1: जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए.
0: जो बालों में तेल लगाते, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
1: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
0: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं.
1: जी बहुत बढ़िया है. अब यहाँ पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे. सुनते हैं ये गाना.

0: इतने जुल्फों के गाने हम बजा रहे हैं और इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, आपने कई ऐसी पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे झाग वाला शैम्पू, तेल ना लगाना, ये तमाम बातों को लेकर बड़ी उपयोगी जानकारी आपने दी। और बालों को लेकर जो फैशन है, मतलब तरह तरह के कलर्स लगाना, आजकल तो लोग पर्पल और नीला और हरा क्या क्या रंग बालों के कर लेते, वो कितना नुकसानदेह, अब इस पर आ जाते हैं। पहले
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है, कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना है।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये।
1: मतलब ये जो कलरिंग करते हैं, बहुत जो डार्क कलर्स अलग तरीका करते हैं,
0: पहले ये नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ही वो जो बम्बैया शब्द है, अतरंगी कलर्स,
1: ये बढ़िया आपका फैशन है
0: जी,
1: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा,
0: राइट?
1: आपको चलने वाला है?
0: नहीं
1: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है
0: जी।
1: आप सोचिए कि नुकसान के साथ आने वाला है तो ये बैगेज के साथ आएगा, आप तैयार है उसके लिए, गो अहेड।
0: बहुत सही बात है, मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर्स हो,
1: हाँ, लेकिन क्या होता है, इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे
0: ट्रेंड के साथ चलना,
1: ट्रेंड के साथ चलना, तो मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ, ठीक है, एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम ऐसे जनरलाइज मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
0: लेकिन करना आपको है, देखना है कि कितना नुकसान हो रहा है,
1: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए
0: जी। और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं, और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
1: जो ग्रे होते हैं, जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है
0: जी, उसको रोक सकते हैं,
1: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ तरह के लोशन है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में। और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें, तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है तो उनको वो कलर नहीं सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
0: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर और अमोनिया फ्री कलर,
1: डैमेज कम हो जाता है
0: जी,
1: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है। जैसे ही आप, वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा होता है। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है।

0: साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है.
1: बिल्कुल.
0: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में.
1: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है.
0: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई
1: जी,
0: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल. तो ये जो डाई करना है कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है. हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ. पर आप बहुत अलग तरह के मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे. फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी.
1: बिल्कुल. तो इसलिए समझदारी से चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है. यहाँ पर एक गाने की बारी है.

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस,
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी टाइप का डैंड्रफ होता
0: है,
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में है, वो अलग है। मुहासे का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है। डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहां मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कल्प सोरेसिस होता है। ये स्कल्प सोरेसिस अलग बीमारी है
0: जी,
1: या जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है वैसे एक स्कल्प सोरेसिस एक प्रकार है,
0: उसके बारे में भी बता दीजिए।
1: तो ये स्कल्प सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कल्प सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, पर रिकरेंस इज वेरी कॉमन, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है।

0: कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं?
1: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता,
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए
1: जी। कई शैंपूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डैंड्रफ के दुश्मन है, क्या ऐसा होता है?
0: शैंपू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैंपू डैंड्रफ के लिए है?
1: बताइए कि शैंपू डैंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
0: नहीं, कुछ शैंपू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैंपू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैंपू काम करना बंद हो जाता है।
1: अच्छा, ऐसा
0: आपको लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मैलेजिया फरफर करके एक फंगस होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो। पर भी आपके नहीं जा रहे तो आपको देखना है कि आपका स्कैल्प सोरेसिस नहीं है ना। आपको नहीं पता चलेगा, दोनों स्कैल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी

0: को कभी कभी ये मलेशिया फरफर करके एक फंगा होता है, वो काम नहीं करते। तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो, पर भी आपके नहीं जा रहे तो आपको देखना है कि आपका स्काल्प सोरेसिस नहीं है ना, आपको नहीं पता चलेगा। दोनों स्काल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया है,
1: जी
0: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्काल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
1: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना
0: हाँ
1: है जी, ये एक थंब रूल हो
0: थंब
1: गया।
0: रूल मतलब लोग
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और वह परेशान हो जाते हैं।
1: हाँ,
0: तो आपको देखना है कि आपको स्काल्प सोरेसिस है कि नहीं है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये मैसेज जाना चाहिए।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
0: बहुत बड़ा मुद्दा।
1: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है ना।

0: डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल, मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इशू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
0: ओहो हो हो,
1: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
0: सीधी सी बात है।
1: लोकल एनेस्थीसिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है।
0: यस।
1: सो अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है और आप मूर्तिकार है, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं, तो आपके हाथ में बहुत सेफ है।
0: Yes.
1: तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है,
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1: Yes.
0: बिल्कुल। ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
1: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
0: जी,
1: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है हेयर ट्रांसप्लांट, और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते, वहां से कुछ प्रमाण से 2000-3000-4000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं। अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ। लोकल एनेस्थीसिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है
0: जी।
1: तो रूट्स को हम, जैसे हम झाड़ की सैंपलिंग करते हैं वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिट देते हैं छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको, रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले, बट हेयर निकलने का टाइम रहता है 6-9 महीना
0: जी,
1: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कोम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब आपके ओरिजिनल
0: ओरिजिनल बालों की तरह हो जाते हैं,
1: बिल्कुल ओरिजिनल बालों के,
0: जैसे पौधे को यहां से हटा के
1: वहां लगा दिया
0: जी। जी, और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
1: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है,
0: क्या ये फेल्योर भी हो सकती है?
1: फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी,
1: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं,

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: अब अभी सही पकड़े हो। बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी।
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूलमेट्स उनको चिढ़ाते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुआ कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरियाटा होगा।
0: ओके,
1: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है, वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए। और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं। परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी चार हफ्ते से छह हफ्ते तक भी चल सकती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। और ये छह हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है, तो उनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग।
0: अच्छा, इतना सब करना पड़ता
1: इतना
0: है।
1: सब करना पड़ता है
0: जी।
1: एलोपेशिया एरियाटा, अभी एलोपेशिया एरियाटा की जो बात करते हैं,

0: सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं उनके 5-6 साल हो जाते हैं। ये 5-6 साल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है।
1: जी।
0: जितना आपने टाइम गमाया उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है। तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरेटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है।
1: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है।
0: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी।
1: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहां ये बात करनी जरूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें।

0: क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज करते हो? आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में. तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए. साथ में अगर ऑयल लगा के करे 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करे तो बेहतर है. खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं है, उसका असर बालों पर गिरता है. तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना जरूरी है. फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है. ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूं जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं.
0: जी.
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है.
0: बिल्कुल.
1: और सोडा,
0: नींद
1: मॉर्निंग से हो गया, अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है. आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूँ. आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो.
0: जी जी.
1: तो वो नहीं ठीक है. ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा. बाहर का आप बहुत सारा चीजें खाते हैं जो प्लास्टिक में आती रहती है, और टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा.
0: बिल्कुल.
1: तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए है. बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग है.
0: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है. डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया.
1: धन्यवाद.
2: श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर न जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं. जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं. बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना. अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में. आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ. तो सुनते रहिए सेहतनामा. कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा
2: हूं। शुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शुदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शुरदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, लीजिए सुनिए ये संदेश।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

पहली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हेमलता और चंद्राणी मुखर्जी की आवाजें थी। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: राजेश रोशन की तर्ज इब्राहिम अश के बोल अनुराधा पौडवाल पंकज उदास और साथियों की आवाजें फिल्म थी बाहर आने तक।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: शहरयार की लिखी गमन फिल्म की यह गजल आपने सुनी सुरेश वाडकर की आवाज में, जयदेव का संगीत था।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: मेरी चुनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत और संगीत था ललित सेन का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज़,

0: सारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे पहले सम्मेलन स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने हाथ मिलाया और बातचीत की। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरी। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के विश्व के बड़े आयातकों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का आर्थिक प्रदर्शन विदेशी घटनाक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया देने और अपनी विकास गति को बनाए रखने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में GDP वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह से ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के इस निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता पैनल को कभी मान्यता नहीं दी, न ही उसकी कार्रवाई में भाग लिया और न ही उसके निर्णयों से बाध्य होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल

0: सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है। 3,925 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में सहायता करेगा। केंद्रीय गोबरधन योजना आज से प्रभावी हो गई है। ये योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट के बाद वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 198 अंक बढ़कर 77,155 पर, जबकि निफ्टी 36 अंक की वृद्धि के साथ 24,116 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सी अर्जुन की तर्ज थी, इंदिवर की रचना आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म थी पुनर्मिलन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: आनंद बख्शी का लिखा गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: अरे मेरे यार, अपने रंग हजार।

0: कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी राजेंद्र कृष्ण की रचना, आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म थी बनारसी बाबू।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आशा भोसले की आवाज में आपने सुना दिल दिया दर्द लिया। इस फिल्म का गीत शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: सोनिक ओमी की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। आप सुन रहे थे आबरू, फिल्म का गीत जीएल रावल का लिखा।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीत और संगीत था रविंद्र जैन का, महेंद्र कपूर की आवाज में फकीरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।

0: वर्मा मलिक का लिखा गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। ये दो गाना था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म नागिन से, यादों की महफिल। ये प्रोग्राम श्रोताओं यहीं संपन्न हुआ।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का

0: कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने सम्मेलन में कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। देश भर में आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत 7 सितंबर तक संतुलित आहार, स्वस्थ जीवन शैली और पोषण के प्रति जागरूकता के वास्ते विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही सही पोषण बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया जाएगा। वहीं आज से देश में स्वच्छता पखवाड़ा 2026 की भी शुरुआत हो रही है। इस अभियान का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़ों के थैलों और दोबारा प्रयोग होने वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उर्वरक विभाग के अनुसार इस राष्ट्रव्यापी अभियान का लक्ष्य भौतिक और डिजिटल दोनों कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाना है। केंद्रीय गोवर्धन योजना आज से प्रभावी हो गई है। ये योजना 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की है। भारत में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना 2035-36 तक लागू रहेगी। संपीड़ित बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ बनाएगी। इस योजना का उद्देश्य घरेलू संपीड़ित बायो गैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना है। ये बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने की 6 तारीख को इस योजना को मंजूरी दी थी। जस्टिस संजय के अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश भी की है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का प्रभार जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड हमले के पीड़ितों के लिए 6 सप्ताह के भीतर उचित पुनर्वास उपाय तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन उपायों में एसिड हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, चिकित्सा सहायता और उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा शामिल होनी चाहिए। साथ ही पीड़ितों को अन्य आवश्यक सहायता भी प्रदान करने पर विचार करने को कहा गया है। इसके अलावा एसिड हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे सख्त नियमों के दायरे में लाना चाहिए। ये निर्देश 2013 में जारी दिशा निर्देशों के बावजूद एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर बनी चिंताओं के बीच आया है। पाली में गणेश महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली गणेश

प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। कारीगर प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल गोबर से गणेश प्रतिमाएं बना रहे हैं। इन प्रतिमाओं का आकार 3 से 12 इंच तक है और इन पर पर्यावरण अनुकूल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमाओं में तुलसी, अपराजिता सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों के बीज डाले गए हैं। आयोजकों के अनुसार 10 दिन तक पूजा के बाद इन प्रतिमाओं को घर के गमले में ही विसर्जित किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

व्यापारी और सपनों का पंख। आज भले ही कई चार पहिया गाड़ियां आ गई हों, लेकिन जो सुकून और बेफिक्री उस दो पहिए की सवारी में थी, वो फिर कभी नहीं लौटी। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन की स्मृतियों के गलियारों में साइकिल केवल लोहे रबर और पैदल से बनी एक ढांचा नहीं, बल्कि आजादी का पहला पंख और जीवन का पहला दर्शन होती है। जब पिता की उंगली थामे एक बच्चा पहली बार साइकिल की गद्दी पर बैठता है, तो वो केवल यात्रा की शुरुआत नहीं करता, बल्कि संतुलन, आत्मविश्वास और दुनिया को अपने नजरिए से देखने की कला सीखता है। तो यहाँ आपको बताना है श्रोताओं कि क्या आप साइकिल जब चलाते थे तो कभी आपने कैंची साइकिल चलाई है? ये कैंची साइकिल क्या होती है, ये भी आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक मजेदार बात है, पिताजी ने पहली साइकिल ली थी, वो सेकेंड हैंड थी, जो मैं और मेरे पापा यूज करते थे। बाद में नौकरी मिली तो ट्रेन से उतरने के बाद कंपनी का जाने के साइकिल कंपनी जाने के लिए साइकिल लेनी पड़ी। वो एक मित्र के साथ इन्होंने कुछ 45 रुपीज लिखा है कि उसमें ली थी, जो सेकेंड हैंड थी, और मित्र का कहना था कि उसे मैं रोज डबल सीट खींचू। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे श्रोताओं, जो उस वक्त जिनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग किराए की साइकिल पर हम बच्चे खूब साइकिल चलाते थे। ऐसे भी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो जरूर हमें लिख भेजिए। साइकिल की सवारी करते हमारे ये कौन अदाकार हैं।

प्रेम रोग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपको ये बताना है कि ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुर जिस साइकिल में जा रहे हैं, ये कौन से रंग की साइकिल है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश साइकिल की बातें हैं इसमें, और बचपन और साइकिल का रिश्ता सिर्फ एक सवारी का नहीं बल्कि आजादी, रोमांच और पहली बार खुद पर भरोसा करने का एहसास था। संतुलन की पहली सीख थी, साइकिल सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं थी, वो हमारी पहली

साइकिल अगर मौसम बहुत अच्छा हो श्रोता, यानी धूप कड़ी न हो, तो चलाने का मजा कुछ और ही होता है। आजकल कुछ ऐसा ही मौसम है। आजकल क्या आप साइकिल चला रहे हैं तो हमें जरूर बताइए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम के समस्त प्रिय श्रोतागण, आप सभी को शुभ दिवस तथा स्नेह वंदन। और शब्द इन्होंने लिखे हैं जीवन सफर मंजिल हो सकते हैं, साइकिल भी तो है। और

हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि प्रेम रोग फिल्म में ऋषि कपूर की साइकिल जो थी वो काले रंग की थी। जी हाँ, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया इशारा फिल्म का, उसमें जॉय मुखर्जी बहुत ही खूबसूरती से और बड़े मजे से साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कैंची साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें आधा पैडल मारना पड़ता है। बचपन में जब साइकिल तक पूरे पैर नहीं पहुंच पाते थे तो आधा पैडल ही मारा करते थे। जी हाँ, क्योंकि बड़े लोगों की जो साइकिल थी वो आसानी से मिल जाती थी श्रोताओं। और तब क्या होता था कि हम लोग छोटे होते थे, बड़े लोगों की साइकिल जब उठाकर चलाते थे तो पहुंच नहीं पाते थे, फिर कैंची साइकिल चलानी पड़ती थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जी श्रोता मित्रों को नमस्कार, और साइकिल का बचपन में हर किसी

कुछ आम रहता है। हमने भी किराए की साइकिल लेकर बहुत चलाई है और कांची डंडा फिर सीट से आज भी साइकिल ही चलाता हूँ। जी हाँ, और साइकिल में श्रोताओ अलग अलग तरह के जो जो लाइट्स होती थी वो पहले होती थी, उनकी कुछ अगर याद है तो आप जरूर बताएं। वैसे मेरे पास तो कुछ याद है कि साइकिल में किस तरह की लाइट्स हुआ करती थी, यानी कहें कि लाइट हुआ करती थी, किसी किसी साइकिल में होती थी पर ज्यादातर साइकिल में नहीं हुआ करती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं विद्यार्थी दशक में 25 पैसे देकर पिताजी ने साइकिल सिखाई मुझे, बाद में हम 8x9 किलोमीटर साइकिल पर धूप में साइकिल पर जाते थे, उस वक्त सहेलियों के साथ जाते थे। सबसे बढ़िया साइकिल तो वो सर्कस में देखी जहाँ कई लड़कियां साइकिल पर सवार हो जाती हैं। जी हाँ, ये तो बड़ा कमाल का होता था। और एक घर के पास भी तो कभी कभी ऐसा खेल दिखाने लोग आते थे कि जिसमें कई कई दिन लगातार साइकिल चलाते रहते थे। ऐसा खेल आपने कभी अपने मोहल्ले में, कभी आपने शहर में देखा हो तो आप ये यादें हमसे ताज़ा कर सकते हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज दिलचस्प गीत होंगे साइकिल पर। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल का दौर वो था, मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने या स्कूल जाना साइकिल से हुआ करता था। मैं आज भी सब्जी मंडी या दूरी कोई खरीदारी होती है तो साइकिल पर ही करता हूँ, यानी कि पास की जो दूरी होती है उसके बारे में शायद ये बात कर रहे हैं। वैसे मेरे पास 2-व्हीलर है लेकिन पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना बहुत जरूरी है, इसलिए रोज नियमित साइकिल चलाता हूँ। ये डाकिया कौन है?

0: क्या किया बाबू?
1: क्या रही?
0: छह महीना हुई गो, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी कल

डाकिया डाक लाता था और जब उसके साइकिल की घंटी बजती थी श्रोताओं, तो क्या एक जुनून होता था कि लोग उसके पीछे जाते थे, घर के बच्चे हों या बूढ़े, कि शायद उनकी कोई चिट्ठी आई हो। तो इस तरह की भी कोई यादें अगर आपकी हो तो आप साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे पलकों की छाव, फिल्म का गीत। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि राजेश खन्ना डाकिया के रूप में है, किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तरफ से गुलजार का लिखा ये प्यारा सा गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहले साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बचपन की आजादी, पापा का प्यार और जीवन का पहला सबक थी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन जब पहली बार कैंची साइकिल जब हमने चलाई, थोड़ा बहुत गिरा, फिर संभला, फिर धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा। कैंची साइकिल का मतलब साइकिल के फ्रेश के अंदर एक पैर धीरे, एक पैर इधर एक पैर उधर करके कैंची साइकिल चलाई जाती थी और बचपन की यादें अभी भी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल में लाइट के लिए पिछले व्हील से चलने वाला डायनमो लगा होता था। लाइट जब जलती थी तो डायनमो व्हील के साथ चलता था और फिर उसको कुछ घर्षण से जो करंट मिलता था उससे ये डायनमो जलता था। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि साइकिल मेरे पापा की थी और हीरो डंडे वाली, मैंने वो सीखी थी, कई बार गिर के कई बार किसी के ऊपर सीधे, बस तब से बंद हुई, एक बार तो खड़े ट्रक में घुस गई, बहुत पिटा था बाबा मेरे, बाबा ने मतलब इनके बाबा ने शायद इनकी पिटाई की। तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक है, जहाँ साइकिल चलाते समय बहुत ही ज्यादा सतर्कता की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमें कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा होता है श्रोताओं के जो बच्चे होते हैं वो साइकिल की दौड़ जो है वो अन्य गाड़ियों के साथ लगाते हैं, तो ऐसा जरूर संभव हो सकता है। साइकिल जितनी हमें प्रिय होती है तो लगता है कि इसकी रफ्तार उसी हिसाब से होनी चाहिए, और होती भी वैसे तो वास्तविकता में नहीं है, तो इसलिए बहुत संभल कर चलाना चाहिए साइकिल। और एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल पर पहले हम बैठ जाते थे, उतर नहीं पाते थे और बस गोल गोल चक्कर काटते रहते थे। जी हाँ, गोल गोल चक्कर काटने में ही तो हम गिरते थे और फिर सीखते थे, और गिरना, फिर उठना, फिर चलना, और इसी तरह से जो जीवन का एक फलसफा है कह सकते हैं साइकिल, वो भी हमें सिखाती है। वैसे साइकिल आप क्या समझते हैं कि आज भी प्रासंगिकता इसकी बनी हुई है, तो आप हमें जरूर लिखें। और साइकिल क्या आज भी आप चलाते हैं, आपने सहेज रखी है? कितनी साइकिलें हैं श्रोताओं इस गीत में।

मेरे सितम फिल्म का ये गीत था विश्वजीत और आशा पारिक पर फिल्म आया गया। हमारे कुछ श्रोताओं ने 7 साइकिलें लिखी हैं, कुछ ने 8 लिखी हैं, तो कितनी साइकिलें हैं ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप हमें बता सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 26 साल पहले मैं और मेरे बड़े भैया ने बैनर छपाई का काम शुरू किया था, तो पहली साइकिल ली थी, फिर वो चोरी हो गई, लेकिन साइकिल की चाबी अभी भी संभाल रखी है। देखिए कितना प्यार होता है श्रोताओ साइकिल से। आपकी कौन से रंग की साइकिल थी, आप अगर बताना चाहें तो आप जरूर बता सकते हैं। वैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें 3 पहिए की एक लकड़ी की साइकिल आती है भी, और पहले भी आया करती थी, आजकल तो वॉकर आ गए हैं, लेकिन 3 पहिए की लकड़ी की साइकिल से बच्चे चलना भी सीखते थे, न सिर्फ साइकिल चलाना बल्कि वो चलना भी सीखते थे। ऐसी कुछ यादें हैं। वैसे आजकल आप किस तरह की साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि साइकिल बचपन की आंगनवाड़ी होती है, साइकिल सीखना चलाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन में ट्राई साइकिल इनके पास थी, उस वक्त वो कांच पर गिर गए थे, अंगूठा कट गया था, 3 टाके आए थे, आज भी निशान है। तो भाई ऐसी भी बातें हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारा नमस्कार, साइकिल बचपन में हमारे लिए केवल एक खेलने का जरिया थी, वही साइकिल आज रोजी रोटी और अपने परिवार चलाने का जरिया बन गई है। जी हाँ, साइकिल से चलना तो बहुत ही अच्छी बात है। श्रोताओं, क्या आप भी साइकिल से आजकल चलते हैं या फिर चलाना आपको अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है कि साइकिल आज भी अनगिनत यादों का प्रतीक है, जहां गति से ज्यादा दिशा, दिखावे से ज्यादा सादगी और गिरने के डर से ज्यादा उठकर दौड़ने का जुनून मायने रखता है। पिता के हाथों से मिली वो पहली साइकिल दरअसल जीवन की हर चुनौती से मुस्कुराकर पार पाने का पहला पाठ थी। एक और श्रोता ने लिखा है, जब स्कूल में थी तो किराए की साइकिल लेकर खूब चलाई, लेकिन अपनी साइकिल नहीं ले पाई, इस बात का मलाल मुझे है। अब इस उम्र में थोड़ा डर लगता है कि कहीं हाथ पर न टूट जाए, लेकिन सुबह योगा में साइकिल जरूर चलाती हूँ और एकदम फिट रहती हूँ। जी हाँ, हम भी फिट रहते हैं और पर्यावरण भी इससे बहुत प्रभावित होता है। श्रोताओ, ये कौन जनाब है साइकिल पर?

0: जाता देख के ना जा मुझको, देश मेरा है झांसी, लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी। होए होए मरते मरते लिख जाऊंगा गवर्नमेंट को लेटर जी LETTER।
1: जय ये गीत फिल्म बहारें फिर भी आएंगी, इस फिल्म से था, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज थी और जॉनी वॉकर पर फिल्म है गया ये गीत था। श्रोताओ अजीज कश्मीरी के बोल थे, सुरीले सफर के बहाने याद आ गई, साइकिल कभी नहीं होती पुरानी, भविष्य इसका उज्जवल, रंग बिरंगे रूप इसके आधुनिकता से, चपल चंचल सेहत को संवार कर प्रदूषण को रोके बन गई है सदा सफल, बचपन में सिखाती जवानी में हंसाती, आगे चलकर काम में आती, अदृश्य काल चक्र को यादों का अनुपम कारवां बनाती। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं, आज साइकिल की सवारी की जाएगी और साइकिल की सवारी सबसे सस्ती और स्वास्थ्यवर्धक है, इससे शरीर और मन स्वस्थ रहता है। आजकल कई तरह की साइकिलें आ रही हैं, सस्ती महंगी और रंग बिरंगी, और गीत भी इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब से होश संभाला तब से घर में साइकिल को देखता आ रहा हूँ, पिताजी साइकिल से ही ड्यूटी जाया करते थे, मेरी उम्र 10 वर्ष की थी तो मेरे बड़े भाइयों की शादी एक साथ हुई तो उन्हें शादी में 2 साइकिल मिली, बस मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, तब से गिरते पड़ते कितनी बार चोट खाई और अंततः साइकिल सीख ही गया। साइकिल चलाने का इतना जुनून सवार था कि 10वीं कक्षा में अपने दोस्त को बिठाकर पूरी दिल्ली को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाला एकमात्र रिंग रोड साइकिल दौड़ाकर मात्र 3 घंटे में नाप दिया। तो इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। और साइकिल जब हम लोग चलाते थे श्रोताओ तो कई बार ऐसा होता था कि अपने दोस्तों को लिए बगैर साइकिल नहीं चलाते थे, और फिर घंटी बजाना, उन्हें बुलाना और साथ में जाना, ऐसे भी कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। कुछ अभिनेता और अभिनेत्री जो दिखाए जाते हैं पर्दे पर साइकिल चलाते हुए, इनमें से कौन आपको अच्छे लगते हैं, यानी साइकिल चलाते हुए कौन से अभिनेता या अभिनेत्री आपको बड़े स्टाइलिश लगते हैं? ये अजब सी स्टाइल है धर्मेंद्र जी की, ऐसी साइकिल आपने चलाई है क्या?

ये गजब तरीके से धर्मेंद्र जी ने साइकिल चलाई है श्रोताओ, और ऐसी साइकिल यानी उल्टी साइकिल बहुत सारे लोग चलाया करते थे, तो क्या आपने भी कभी चलाई है तो आप जरूर लिखें। हमारी श्रोता ने लिखा है कि फिल्म औरत का जो गीत हमने आपको सुनवाया नाजिमा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हाँ मैंने भी कैची साइकिल चलाई है, और एक और श्रोता लिखती है साइकिल भी क्या चीज थी बचपन, क्या आज भी साइकिल को लेकर उतनी ही पॉजिटिव हूँ जितना अपने बचपन में थी। जब पहली बार साइकिल पर बैठे थे तो लगता था कि साइकिल नहीं हवाई जहाज है, और इस पर बैठकर चाहे जहां तक उड़ सकते हैं। वो चैन के दिन जब साइकिल से सारा शहर नाप लेते थे, आज भी मेरे पास एक गुलाबी साइकिल है। साइकिल हमारी दोस्त ही नहीं, ये तो पर्यावरण की भी सच्ची साथी है, और साइकिल चलाइए और अपनी और प्रकृति की सेहत बनाइए। एक और श्रोता लिखती है कि कुछ चीजें उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, बस यादों की अलमारी में और तहजीब से रख दी जाती हैं। मेरी पहली साइकिल भी कुछ ऐसी ही थी, उसने मुझे रास्तों से ज्यादा जिंदगी का संतुलन सिखाया था। गिरना भी उसी ने सिखाया, और उठकर फिर चलना पढ़ना भी। और पापा के हाथ पीछे पापा का हाथ था, सामने खुली हुई गली। और कुछ इन्होंने अपनी बात भी लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ताऊ दादा यदि सबने नौकरी अधिकतर साइकिल के द्वारा की है, और सेवा उपरांत भी उपयोग किया है। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज तक साइकिल से जाके पढ़ाई हम लोगों ने की, और बाइक भी थी। साइकिल से घूमना जाना आज भी जारी है, और अब पापा नहीं चला रहे, फिर भी हम लोग उन्हें बताते हैं साइकिल जा रहे हैं।

0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, शहरों में भी और गांवों में भी। भले बाइक से फराटा लोग आज दिखाते हैं, लेकिन पेट्रोल की महंगाई ने तमाम लोगों को सिखा दिया कि 4-5 किलोमीटर तक जाना है तो साइकिल ही ठीक है। हम आज भी इस उम्र में साइकिल चलाते हैं, जो एक तरह का व्यायाम कराती है और पैसे भी बचाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे जमाने में लकड़ी की गुड़गुड़ी चलाई जाती थी, नाना जी ने दी थी, फिर भाई हुआ तो बाबा ने 3 चक्के वाली साइकिल खरीदी। अब नवासे के जमाने में चलना क्या सीखेंगे, तो साइकिल खरीदी, अब तो स्कूटर की मांग है।
1: सूरज बैठा अपनी गठड़ी को,

0: है भगवान।
1: मैं मरता जा मित्रा,
0: करता जा मित्रा,
1: किसी से झुकाता चल मित्रा,
0: जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चले जाना, चलते रहो सुख हो शाम।
2: मनोज कुमार शोर फिल्म में 7 दिन तक साइकिल चलाते हैं, श्रोताओ ऐसा नजर आता है, ऐसा दिखाया गया है। आप सुन रहे थे ये गीत मन्नदे, महेंद्र कपूर और श्यामा चित्तर की आवाज में। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी वाली 3 पहिए की साइकिल पर हम तो 2 बहनों ने चलाना सीखा, पर अब वो नहीं दिखती। मेरी पहली साइकिल काले रंग की थी, स्कूल जाते थे भीगते पानी में और धूप में कोहरे में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बच्चे के लिए लकड़ी की 3 पहिया साइकिल को हिंदी में घडूला और मराठी में पांगुल घड़ी कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि जॉनी वॉकर जो गीत हमने आपको सुनवाया था, इन्होंने ही लिखा है कि जॉनी वॉकर साइकिल पर नजर आते हैं और ये मुकाबला करते हैं कलकत्ता की ट्राम से। एक और श्रोता ने लिखा है कि मैंने साइकिल चलाना सीखने की बहुत कोशिश की पर सीख नहीं पाई, पार्क में जिम में है और वहां मैं जाती हूँ और चलाती हूँ साइकिल। आपको यह अदाकार और फिल्म बतानी है और संगीतकार बताने हैं श्रोताओं।

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत था। देवानंद और मुमताज पर फिल्माया गया, नीरज के बोल थे, सचिन देव वर्मन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ और साइकिल से जो है सुबह निकलता हूँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसा इनका लिखना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर यूको पार्क जाता हूँ, फिर वहाँ मॉर्निंग वॉक कर साइकिल से ही वापस लौटता हूँ। ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है जिससे अपने तरोताजा अपने आप को महसूस करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल से लौटते वक्त साइकिल पर तीन तीन दोस्त बैठकर आते थे, अन्य दोस्तों के साथ रेसिंग भी करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लीडर में दिलीप कुमार ने जो उल्टी साइकिल दौड़ाई है उसकी बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कॉलेज टूर पर इंदौर गए, 1989 की यादें ताजा हुई।

पड़ोसन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं, सहरा बानो नजर आती हैं। श्रोताओं, आपके तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके तमाम कमेंट्स के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती के संग सुरीला सफर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षाकर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और

0: देश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फॉरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50 हजार करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
2: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2000

0: 1 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में FM गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। FM गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई FM गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी FM गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत था हसरत जयपुरी के बोल, संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: उड़ जा काले कावा,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी,
2: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया ये दुगाना आपने सुना गुमराह फिल्म से, साहिल ध्यानवी के बोलों को सुरों में ढाला रवि ने।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे संगीता श्रीवास्तव के साथ।

हसरत जयपुरी के बोलों को सुनो में ढाला शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। फिल्म थी प्यार ही प्यार। फिल्म पेंगेस्ट किशोर कुमार की आवाज़।

आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत हलाल की तर्ज ये तो गाना मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर का गाया फिल्म अनजाना से, और यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम हमारे साथ हो तो तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और बताओ कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर मिलना हो रहा है।
2: ऐसे तो हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन मिलना जो होता है ना वो यहाँ पे ही होता है।
1: और साथ में जब बात करना होता है, विषय बताने होते हैं, तो भी बड़ा मजा आता है। जैसे भाई देखो, आज का जो विषय है मुहावरों की दुनिया।
2: हाँ।
1: तो मुंह में पानी आना, तो इस पर भाई आप लोग अपनी अपनी छोटी छोटी सी बातें लिखिए कि
2: कब को क्या देख के मुंह में पानी आ जाता है।
1: तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है ना। हाँ। और देखो, हल्की फुल्की बातें में हम करेंगे मुफ्त का लालच।
2: यानी कि एक के साथ अगर हमें एक फ्री मिल रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको ले लेते हैं।
1: बस ये सब चीजें देखो, कपड़े पहनने, वस्तुओं से लेकर के कुछ खाने पीने पर भी होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो बस अपनी अपनी यादें ताजा कीजिए। और सखी विशेष में क्या लेकर के आई हो आरती?
2: आज हम सखी विशेष में हम बात करेंगे छाया नंजप्पा जी के बारे में, जो कि संस्थापक है नेक्टर फ्रेश की, उनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आज हम बात करेंगे दैनिक आहार और पोषण, हमारी थाली में पोषण कितना होता है और जो चीजें हमारे नुकसान करने वाली हैं वो कितनी होती हैं।
1: हाँ।
2: इसके बारे में हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हमारे हम जो खाना खा रहे हैं दैनिक रूप से, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसा खाना चाहिए, है ना।
2: बिल्कुल।
1: तो ताजा, बासी, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तो हम भाई चलेंगे गीत की ओर।
2: संगीत के बिना तो सब बातें अधूरी हैं।

0: हूँ तो भाई आती तेरे कारण ये जो भाई ये चीजें होती है ना, ये घरों में बहुत होती है कि तुम्हारे कारण
1: तुम्हारी वजह से हुआ जो भी हुआ
0: तुम्हारी वजह से जो भी हुआ, किचन में अब ये बनाए वो बनाए, सब चलता रहता है। और देखो जब हमारी जिंदगी में रोज ही ये सब चीजें होती रहती है कि भाई क्या बनाए क्या खाएं, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे हमारी थाली में कैसा खाना हो जो विटामिन प्रोटीन मिनरल से भरा हुआ हो, यानी कि दैनिक आहार और जो पोषण है उसमें हमें एक समय में नाश्ते में अच्छा खासा मिल जाए, फिर लंच में मिल जाए जो हम दोपहर का भोजन जिसे कहते हैं उसमें अच्छा खाना हो, और रात का खाना, तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खासकर हम गृहिणियों को, और तुमको भी याद रखना पड़ता है ना कि चटपटा कितना खाना है, सादा कितना खाना है।
1: अच्छा, चटपटा मुझे ध्यान रखना है।
0: चटपटा तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए तुम याद रखो, है ना। और अक्सर हम खाना तो पेट भरने के लिए खाते हैं ना, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमारा भोजन हमारे शरीर को सही पोषण भी दे रहा है कि नहीं, है ना। आप पेट भरने के लिए ही ना खाएं, जीने के लिए भी खाकर सोचें, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और क्या कहते
1: और है? कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का निवास होता है, और स्वस्थ शरीर की शुरुआत होती है एक संतुलित और पौष्टिक आहार से। और पोषण का अर्थ ही होता है कि भोजन के माध्यम से शरीर को आवश्यक तत्व मिलने जितने भी हो सके, और जिससे कि हमें ऊर्जा मिल सके और शरीर का विकास हो, और तभी तो स्वस्थ रह पाएंगे।
0: बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि हमारा जो रोज का भोजन होता है उसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी। जैसे हमने अभी कहा ही था कि प्रोटीन विटामिन से तो कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को ऊर्जा देता है, तो वो भी होना चाहिए। और प्रोटीन डाइट जिसे कहते हैं, प्रोटीन जो शरीर की वृद्धि और उत्कों की देखभाल करने में मदद करता है, और वसा जो ऊर्जा का एक स्रोत है और शरीर के लिए वो बहुत आवश्यक भी है, तो विटामिन और खनिज जो शरीर के सामान्य कार्यों और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो अपने खाने में उन चीजों को देखें। और जो हमारी सब्जियां वगैरह होती हैं, जो भी अनाज है, तो आप चाहे तो एक चार्ट बना करके किचन में चिपका लीजिए कि भाई इसमें ये चीज पाया जाता है, तो हम बदल बदल की चीज बनाएंगे।
1: बिल्कुल, जितनी रंग बिरंगी आपकी थाली होगी ना हमारी, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो क्योंकि वो सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं बल्कि पौष्टिक और विविध भोजन जरूरी होता है, कि एक ही तरीके का खाना खाकर हम वैसे भी ऊब जाते हैं, तो हमारी थाली जितनी ज्यादा रंग बिरंगी होगी उतना ही हमें खाने में अच्छा लगेगा। और जिसमें की होनी चाहिए क्या क्या चीजें, हरी सब्जियां, मौसमी फल होने चाहिए, दालें होनी चाहिए, अनाज और बहुत सी पौष्टिक जो खाद्य पदार्थ है उनको अपनी दिनचर्या का हमें हिस्सा बनाना चाहिए। खासकर दालें तो बहुत जरूर होनी चाहिए, चाहे बच्चों चाहे बड़े हो, सबको दाल तो खानी ही चाहिए।
0: बिल्कुल। और सुबह का नाश्ता

0: बहुत जरूरी होता है वो भी समय से
1: जी
0: करने के लिए, क्योंकि रात भर हम जो रात में खाकर सोते हैं सुबह तक तो वो हजम हो जाता है, लेकिन नाश्ता ही देर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: तो उस समय आप नाश्ता एक पौष्टिक लीजिए, पोहा उपमा ये सब चीजें ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना, चीला वगैरह भी, मूंग का चीला ले सकते हैं। और दोपहर के भोजन में अनाज दाल जैसा तुमने कहा है, और दही के साथ साथ प्रोटीन और अन्य सब्जियां भी शामिल करें, और शाम को जरूरत से ज्यादा तले भुने या अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों के बजाय पौष्टिक विकल्प चुनना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हम काम करके थक जाते हैं तो हमें खाना खा के रात को सोना भी है, तो जब हम तेल वाला मिर्च मसाले का खाएंगे तो हमें तकलीफ बढ़ेगी ही
1: बिल्कुल। और
0: बढ़ेगी।
1: वैसे भी शाम के समय थोड़ा सा हमारी जो पाचन क्रिया होती है थोड़ी धीमी हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें बहुत ही हल्का और सुपाच्य खाना खाना चाहिए। और जैसे सैलेड हम खा सकते, सलाद खा सकते हैं, है ना, या कोई हरी या सब्जी कोई अपने हमने हरी बनाई, हरी सब्जी बना रखी तो उसको खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं केवल,
0: बिल्कुल
1: तो इस तरीके की चीजें हमें खानी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और इसके अलावा हमारे शरीर के लिए पानी भी बहुत जरूरी है, तो दिन भर पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी होता
0: ये
1: है।
0: तुमने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम 7-8 गिलास पानी आप जरूर पिए, कि जिससे आपके अंदर शरीर की जो गंदगी है
1: और
0: वो
1: घूट
0: बाहर
1: घूट
0: निकले।
1: कर पानी पीजिए, और जरूरी नहीं कि आप एकदम से बहुत सारा पानी पी लें, क्योंकि फिर हमारे शरीर को उसको भी करने में बहुत टाइम लगेगा, परेशानी होगी, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके पीजिए।
0: और
1: और
0: पानी जब भी पिए ना तो बैठ कर पिए, धीरे धीरे
1: बिल्कुल
0: पिए। तो फिलहाल तो हम लोग एक गीत सुन
1: एक गीत
0: लेते
1: सुन लेते हैं।

झूमती है, लहरें बार बार किनारे को क्यों झूमती है।

0: तो अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है आरती सखी
1: सखी
0: सहेली।
1: सहेली
0: तो हमारे साथी जो लगे उन्होंने क्या क्या संदेश लिखकर भेजे हैं।
1: बहुत कुछ लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वही शरीर को स्वस्थ बनाता है। कभी कभार एक आध बार चल जाता है। मैं भी सुबह की शुरुआत अपनी जो वैसी चाय होती है उससे करती हूँ, और दिन में दाल चावल हरी सब्जी रोटी और रात में सब्जी डालकर ज्वार की दलिया खाती हूँ, और कभी कभार तीज त्योहार पर पूरी सब्जी खा लेती हूँ।
0: क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि दैनिक आहार और पोषण, रोजमर्रा के जो हम खाना खाते हैं उसमें पोषण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे सेहत को एक अच्छी गति प्रदान करता है। उसमें पोषण हम किस तरीके से ला सकते हैं, दैनिक आहार में पोषण लाने के लिए हर तरीके की चीज खाएं, चावल रोटी, लेकिन कहते हैं चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसीलिए चावल और रोटी को कभी भी एक साथ नहीं खाना है। और अपने आहार में अनाज, हर प्रकार की दालें, राजमा, चना, मूंग, इस तरह की चीजें आप शामिल कर सकते हैं। दूध, दही ले, और जो मतलब जिस तरह के निरामिष या शामिष भोजन वैसे करते हैं तो वो करें आप। और जंक फूड और तली चीजों से दूर रहें, और घर में ही पोषक तत्वों से भरा स्वादिष्ट खाना जो बनता है वो आप खा सकते हैं। मूंग का दाल का चीला है, और ऐसे सिस्टम भी आपका सही रहता है, सेहत सही रहती है। और बहुत से खाने भी आप खोज सकते हैं कि क्या क्या हमारे लिए, सूजी का उपमा वगैरह, चीला, ये सब खा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि दैनिक आहार और पोषण में भोजन में रंग बिरंगी सब्जियां और फल आप खा सकते हैं। 8 से 10 गिलास पानी पीजिए और बहुत ज्यादा चीनी और मैदे वाली चीजों से दूरी बनाकर रखिए, और खाने को स्वाद के लिए नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार खाइए।
0: बिल्कुल। और जैसे कि दैनिक आहार और पोषण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और मानसिक विकास का मुख्य आधार है, आहार है। और ये वो भोजन है और पेय है जिसे हम नियमित रूप से सेवन करते हैं। पोषण जो है ये शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों को ग्रहण करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया है जो हमें ऊर्जा देती है और स्वास्थ्य को बनाए रखती है। और भाई इसकी जानकारी हम एक दूसरे से ले सकते हैं। घर में जो परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं ना आरती, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी बताते हैं कि देखो ये चीज खाओ, गर्मी में ऐसी चीजें खाओ कि आपका तन में शीतलता बनी रहे। और जैसे कि बारिश के समय है तो इस तरह की कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें खाओ कि आपको थोड़ी सी गर्मी भी रहे, और सर्दी में तो कहा
1: बिल्कुल
0: ही जाता है कि गर्म पदार्थ खाने हैं। तो उन सब चीजों का आप बड़े बूढ़ों से भी आप सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी किताबें भी आ गई हैं, आप सोशल मीडिया या आप उससे भी जानकारी नेट से भी, इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो
1: बिल्कुल। और वैसे भी अगर हम बाहर की चीजें खाते हैं या जैसे कि अपने घर का खाना छोड़ के हम बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग किया हुआ जब तेल भी उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें बन चुकी होती हैं और लगातार वो तेल खौल रहा होता है, गर्म हो रहा होता है,
0: बिल्कुल
1: तो वो तो आपको नुकसान पहुंचाने ही वाला है वैसे भी।
0: बिल्कुल
1: और हम जो भी चीजें बाहर की खाते हैं उसमें कितना तेल, कितना नमक तेज है या कितना तेल बहुत ज्यादा है या कितना मिर्ची तेज है, मतलब वो जो चीजें हैं मसाले हैं वो कौन से हिसाब से डाले गए हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना कि हम बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम खाएं, अपने घर पे ही आप अच्छा ताजा भोजन खाएं और सुपाच्य हो, अच्छा हो, जो हल्का हो, जो
0: बिल्कुल
1: पचने में आसान हो, ऐसा भोजन खाना चाहिए।
0: बिल्कुल। और खुला जब भी खाना किचन में बने, आप बना के रखती हैं तो उसको ढककर रखें, कभी भी खुला मत रखें। और हो सके तो आप बिल्कुल बासी खाने को मतलब ना ही खाएं तो अच्छा है, ताजा ही भोजन का जैसा तुमने कहा ही है। और बच्चों को भी यही सिखाएं कि भाई आप भी ताजा खाना खाइए, हम बना रही है नहीं कि अभी नहीं खाएंगे तभी नहीं खाएंगे। बच्चे करते ना अक्सर ऐसा कि
1: बिल्कुल
0: नहीं अभी मन नहीं कर रहा है, अभी पेट भरा हुआ है, या कोई भी बहाने कर देंगे कि अब मोबाइल छोड़ के उन्हें खाना खाने के लिए बोल
1: हाँ
0: दिया गया है ना। तो

0: इस तरह की चीजें ध्यान रखें। और साथ में जब खाना खाने के लिए आप लोग बैठते हैं, खाना खाने सब लोग, हम सभी लोग बैठते हैं, तो उस समय इन सब चीजों से को अपने आप से दूर कर दें, मोबाइल वगैरह, कि सिर्फ खाने पर आप ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं।
1: वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो जब हम अपने हाथों से खाना अपने मुंह तक पहुंचाते हैं, वो जो खाना होता है ना, वो एक अलग सा रिश्ता बनाता है हमारे हाथों से, हमारे मुंह तक आता है खाना, तो उसकी वजह से ना हमारे शरीर पे बहुत बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: अच्छा, जो बनाता भी है ना, एक घंटे दो घंटे करके मेहनत करके जो हमारी सखियां बहनें सब बनाते हैं हम लोग, तो उनकी तारीफ करने के लिए भी आप सोचिए ना कि आप जब स्वाद से खाएंगे तभी तो आप तारीफ कर पाएंगे। अगर आपका ध्यान मोबाइल में लगा है या टीवी में लगा है तो आप तो खाने का स्वाद ही नहीं ले रहे हैं, पता नहीं चल रहा है ना। तो वो चीज भी बहुत ध्यान रखना है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि दैनिक आहार बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, वो शरीर को स्वस्थ बनाता है, कभी कभार एक आध बार चल जाता है। मैं भी सुबह की शुरुआत मतलब हर्बल चाय से करती हूँ। तो ये देखो, ये चीज बहुत अच्छी बात है, और तुमने भी इस को बताया ही था आगे इसी संदेश को, तो बहुत अच्छी सी बात है कि इस तरह से ध्यान रखना चाहिए अपना। और हम ध्यान रख लेते हैं बातों के बीच में
1: एक गीत।

0: तो भाई देखो आरती, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो भाई आज कौन सी सखी विशेष की तुम बात करने वाली हो?
1: मैं हम बात करने वाले हैं आज छाया नंजप्पा जी की।
0: जी
1: तो छाया नंजप्पा राजप्पा की, जो कि भारत की जानी मानी महिला उद्यमी में से शामिल हैं, और इनका जन्म हुआ था दक्षिण कूर्ग नलकरी में। उनका बचपन अपेक्षाकृत पारंपरिक और सुरक्षित वातावरण में बीता था। उन्होंने मैसूर में अपनी शिक्षा पूरी की। हालांकि उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो आगे बहुत समय तक जारी नहीं रह सकी, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा और पत्राचार के माध्यम से उन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया।
0: छाया के जीवन में एक कठिन दौर तब आया जब उनके पिता का निधन हुआ और बाद में उनका विवाह भी असफल रहा, और इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और उनका उद्देश्य केवल अपना व्यवसाय शुरू करना नहीं था, बल्कि अपने गृह क्षेत्र के लोगों, विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा करना भी था।
1: बिल्कुल, छाया ने जब अपनी शुरुआत करी थी अपने उद्यम की, तो उनके पास ना तो पारिवारिक व्यवसाय की पृष्ठभूमि थी और ना ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कोई लंबा अनुभव। उन्होंने शहद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CBRTI पुणे में प्रशिक्षण लिया। इसी दौरान उन्हें मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण की तकनीकी जानकारी भी मिली,
0: और उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और धीरे धीरे शहद की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का व्यवसाय विकसित किया। उनके व्यवसाय की शुरुआत विशेष रूप से शहद और कृषि आधारित खाद्य उत्पादों से हुई, और कंपनी की शुरुआत में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड KVIC समर्थित ग्रामीण उद्यम के रूप में विकसित किया गया।
1: उनकी कंपनी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बनाना है, खाद्य उत्पाद बनाना है। बाद में कंपनी ने अपने उत्पादों का विस्तार किया, जिसमें शहद, जैम, सॉस, चिया सीड्स, प्राकृतिक सिरका, सेब का सिरका, कॉफी और मसालों जैसे उत्पाद हैं। छाया के उद्यम में का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है ग्रामीण रोजगार और छोटे किसानों और सभी समुदायों को उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करके आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने वन समुदायों से प्राप्त शहद की खरीद और उसे बाजार तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। उनका मॉडल किसानों, शहद संग्रह करने वाले समुदायों, खाद्य उपयोग और उपभोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने पर केंद्रित रहा है, और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कम शिक्षित और कम प्रशिक्षित लोगों को काम के दौरान प्रशिक्षण देकर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उत्पादन की प्रक्रिया से जोड़ा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि उनकी जो उद्यमिता है उसको सामाजिक उद्यमिता का उदाहरण भी माना जाता है। उनकी कंपनी को वी कनेक्ट इंटरनेशनल के उनको के विमेन ओन्ड लोगों का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला ब्रांड बताया गया है। ये पहचान महिला उद्यमिता और महिला स्वामित्व वाले व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने का के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, और उनकी कंपनी ने धीरे धीरे बड़े होटल समूहों, खुदरा संस्थानों और आयुर्वेद और फार्मा क्षेत्र के ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाई। और उनकी कंपनी ने केवल कच्चे शहद की बिक्री तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया। और छाया ने भारतीय बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले पैक किए गए शहद और अन्य खाद्य उत्पादों को स्थापित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।
1: बिल्कुल, और छाया नंजप्पा नेशनल बी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ी रही हैं और KVIC के हनी मिशन की नेशनल लेवल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी रही हैं। वो एसोसिएशन ऑफ बिजनेस वीमेन इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारत की कंट्री प्रेसिडेंट और कर्नाटक की स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी सूचीबद्ध हैं।
0: और देखो, इनके बहुत सारे काम हैं, इन्होंने मतलब इस तरह से जो किया है वो सबके लिए एक मिसाल है, और हम लोग इनके बारे में और भी बातें करेंगे आरती, लेकिन अभी एक समय हो रहा है, धीरे धीरे एक अंतराल का समय हो रहा है, तो हम लोग एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर हम इनके बारे में आगे बातें करेंगे।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत करते हैं और हम लोग बात कर रहे थे छाया जी के बारे में। तो क्या बातें चल रही थी आरती?
1: बिल्कुल, छाया नंजप्पा विभिन्न संस्थाओं और मंचों से भी जुड़ी रही हैं। वो नेशनल बी बोर्ड से जुड़ी हैं और हनी मिशन की राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार भी हैं, और जैसे कि हमने बताया था अभी, और उन्होंने बहुत ही अलग अलग जगहों पे पूरा उन्होंने उसका वक्ता के रूप में भी भाग लिया है। और साथ ही ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के विकास के साथ छाया ने पारंपरिक कला और कारीगरों को बाजार से जोड़ने की दिशा में भी पहल की है। और नमन नामक पहल का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी कारीगरों की कला और सांस्कृतिक विरासत को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुँचाया है। छाया नंजप्पा को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्रियदर्शनी अवार्ड, सार्थक नारी अवार्ड के सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया था।
0: क्या बात है। और हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि छाया नंजप्पा ने मैसूर कर्नाटक में शहद प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की। वो देश में इस प्रकार का प्लांट स्थापित करने वाली पहली महिला उद्यमी बनी। कंपनी ने केवल शुद्ध शहद से शुरुआत की, लेकिन बाद में किसानों की सहायता के लिए जैम, सॉस, कॉफी, चिया सीड्स जैसे 35 से अधिक प्राकृतिक खाद्य उत्पादों का विस्तार किया। नेक्टर फ्रेश देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने बिना कृत्रिम रंगों और प्रिजर्वेटिव के जैम का निर्माण किया। बहुत सुंदर सी बात है ये।
1: बिल्कुल, और साथ ही छाया नंजप्पा जी ने पहली बार शहद और जैम के लिए पॉलीप्रोपलाइन ब्लिस्टर चिपलेट्स और तकनीक का उपयोग अन्य ब्रांड्स के रूप में किया था अपने। इनके ब्रांड ने भारत में कई विदेशी और 20 साल पुराने स्थापित ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया था। आज इनके उत्पाद भारत के प्रमुख प्रीमियम होटल में भी सप्लाई किए जाते हैं। ये हमारा एक संदेश मिला है हमें
0: श्रोता ने। और आते हमारे साथी और लिखते हैं कि हर बार जगह बदलने पर लाखों का नुकसान होता था। इसके अलावा उपकरणों की टूट फूट के कारण कुशल कर्मचारी कम हो जाते थे और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ता था। इसलिए हमेशा आशावादी रहने वाली छाया कहती हैं, हर बार जब हम नए लोगों को प्रशिक्षण देते हैं तो उनके साथ मेरे संबंध और भी मजबूत होते जाते हैं। बहुत सही बात है, जब हम इस तरह से किसी को भी सिखाना चाहते हैं ना, तो वो एक टीम बन जाती है और टीम के अंदर एक आपसी जो सद्भाव होता है, एकता होती है, अनुशासन होता है और आप सबका सहयोग होता है, तो उससे ही वो काम अच्छा निखर के आता है।
1: बिल्कुल, और इस समय हमें अपने सखियों को अपने सखाओं के साथ थोड़ा सहयोग करना चाहिए, उन्हें गीत सुनाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: उड़ जा काले कावा
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो भी आरती, अब हम लोग किस विषय की ओर आगे बढ़ने वाले हैं?
5: अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मुफ्त की ओर।
4: अच्छा, सबसे प्यारा विषय लगता है तुम्हारा
5: मुफ्त की ओर। कई बार होता है ना कि हम लोग कभी कभी लालच में भी जाते हैं। अच्छा, सेल लगी है, अच्छा मुफ्त मिल रहा है सामान, चलो चलो ले लेते हैं, कुछ चीजें अच्छी मिल जाएंगी। तो ये जो लालच होता है ना हमारा, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
4: ओवर बजट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और हम लेते चले जाते हैं सामान, ये नहीं सोचते कि हमारे घर में स्टोर जमा हो जाएगा, अलमारी भर जाएगी, है ना।
5: इससे बस घर भी तो घर में भी सब सामान इतना ज्यादा जमा हो जाता है ना, जिसको इसका प्रयोग नहीं, हमारे पास जब उसका हमें उपयोग नहीं करना है तो हम जबरदस्ती में उसको भरते ही तो हैं।
4: बिल्कुल।
5: और दूसरी चीज है, कभी कभी खाने में जब हम ये काम करते हैं ना कि इसके साथ में ये मुफ्त है या ये हम इतना खा सकते हैं, ये थाली मुफ्त है या बड़ी थाली लेंगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे।
4: और कई बार क्या होता है कि हम उसके चक्कर में ज्यादा ऑर्डर दे देते हैं।
5: हाँ।
4: फिर अंत में होता है कि भाई इसको पैक कर दीजिए, हम घर ले जाएंगे, तो ये सारी चीजें भी होती है। तो मुफ्त का लालच जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही होता है ना कि मुफ्त मिले तो बुरा क्या है, यही सोचकर कई बार हम ऐसी चीजों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं जिनकी वास्तव में हमें आवश्यकता भी नहीं होती है। और मुफ्त शब्द सुनते ही मन में बड़ा उत्साह सा जाग उठता है और हम बिना सोचे समझे उस वस्तु या अवसर को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही मुफ्त का लालच कई बार नुकसान का कारण बन जाता है।
5: बिल्कुल। बाजार में जो आकर्षक ऑफर रहते हैं, फ्री गिफ्ट रहते हैं, एक के साथ एक मुफ्त जैसी योजनाएं रहती हैं, वो बहुत ज्यादा लुभावनी लगती हैं और कई बार हम जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, और क्योंकि कुछ मुफ्त मिल रहा होता है साथ में, और बाद में पता चलता है कि जिस चीज को पाने के लिए इतना खर्च किया उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में भी मुफ्त के लालच से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इस समय नकली इनाम, आकर्षक ऑफर और संदिग्ध संदेश लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी मुफ्त चीज के पीछे भागने से पहले उसकी सच्चाई और अपनी आवश्यकता को समझना चाहिए।
4: बिल्कुल। और कई बार हम कहीं दुकान पर लेने जाते हैं आरती, तो वहां पर एक दिखाएंगे कि आप स्क्रैच कार्ड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रैच कर दीजिए तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो भाई वो चीज कभी ना करें, लालच में ना पड़े। और कहा भी गया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
5: बिल्कुल।
4: और हर मुफ्त मिलने वाली वस्तु वास्तव में लाभदायक नहीं होती। समझदारी इसी में है कि हम लालच के बजाय विवेक से निर्णय लें, क्योंकि कई बार मुफ्त का लालच हमें इतना महंगा पड़ जाता है आरती कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और जो चीज बिना सोचे समझे मुफ्त में मिल रही हो उसके पीछे छिपी कीमत को पहचानना भी बहुत जरूरी है ना। और हमारे साथी क्या लिखते हैं?
5: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर हमें हल्की फुल्की मुश्किलों में डाल देता है, कभी कभी भारी मुश्किल में भी डाल देता है। विज्ञापन दाता और दुकानदार हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और मुफ्त की हर चीज की एक छिपी हुई कीमत होती है, चाहे वो आपका कीमती समय हो, फोन का डेटा हो या घर में बढ़ने वाला कबाड़। इसलिए अगली बार जब भी फ्री का बोर्ड देखें तो खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? बहुत सही बात कही।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और मुफ्त का लालच इस विषय की सबसे बड़ी खूबी इसका आम जीवन से जुड़ा होना है। हमारे साथ ही लिखते हैं कि लोग 100 रुपए की मुफ्त चीज पाने के लिए 500 का ऐसा सामान खरीद लाते हैं जिसकी उन्हें कभी जरूरत ही नहीं होती। घर की अलमारियों में बंद पड़ी बेकार वस्तुएं इस मुफ्त के लालच का जीता जागता सबूत है। और ये हमारे खोखले प्रदर्शन और दिखावे की संस्कृति पर करारा प्रहार भी है। मनोवैज्ञानिक पहलू लेखन में इस बात का गहरा अर्थ मिलता है कि मुफ्त केवल एक ऑफर नहीं बल्कि एक मानसिक जाल है, क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि मुफ्त का लालच देकर किसी भी फालतू चीज को

0: बेचा जा सकता है। ग्राहक को लगता है कि उसने पैसे बचा लिए हैं, जबकि असल में वो अपनी जेब और जेब को वो ढीला कर चुका होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में बहुत सारे मान लो तवे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम गए नहीं, हमें तो कुछ दूसरी ब्रांड का चाहिए, वो ले आए, तो बेचारे दो तवे जो ऑलरेडी आपके उसमें रैक में रखे थे, वो अफसोस मना रहे हैं कि कब मुझे चढ़ाओगे, कब मुझे गर्म करोगे।
1: उनका तो मौका ही नहीं पड़ता,
0: मौका ही नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि घर में जितनी चीजें हैं, अगर एक है तो उसकी बड़ी कद्र होगी, बहुत ज्यादा चीजें होती तो किसी ना किसी की तो बेकदरी हो ही जाती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हमारे एक साथी जो कहते हैं कि मुफ्त का लालच इंसानी फितरत का एक ऐसा कमजोर पहलू है जिस पर दुनिया का पूरा बाजार टिका हुआ है। ये विषय आज के उपभोक्तावादी समाज का कड़वा सच दिखाता है, जिसे बेहद हल्के फुल्के और हास्यास्पद शैली में आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक के साथ एक, मुफ्त या मुफ्त डिलीवरी जैसे शब्द इंसानी दिमाग पर किसी जादू की तरह काम करते हैं। और इसीलिए कहा गया कि मुफ्त का शब्द सुनते ही इंसान की तार्किक बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि जहां हमने सुना मुफ्त है, बस फिर कुछ सोचते नहीं है।
0: हम जो महिलाएं ना, माफ कीजिएगा, हमने अपने को भी शामिल किया, हम लोग मुफ्त के चक्कर में चले जाते हैं कि भाई वो साड़ी वहां पे एक के साथ एक मिल रही है, ले लेते हैं। या कुछ भी कान की चीजें हुई, झुमका शुमका चूड़ी कंगन, ऐसी चीजें पे हम लोग बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं, यानी चमक दमक में बस
1: खो जाते हैं।
0: फिलहाल तो हम खोते नहीं है, हम सुनते हैं एक गीत।

0: तुम्हें आरती देखो, मुंह में पानी आना। अब सोचो अगर हमने कोई नाम ले लिए तो तुम्हारे मुंह में क्या पानी आएगा क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो तुरंत आ जाते हैं जहां समोसे
0: जैसे
1: की
0: देख
1: बात
0: लो,
1: चलती है।
0: समोसा तो छोड़ो, इमली, कैफा, बेर,
1: सच्ची में
0: कमरक,
1: बस
0: है ना, और
1: करो
0: चूरन, पानी के बताशे।
1: बस
0: तो तुम्हारे तो पानी आ गया, मुझे तो सामने दिख रहा है, लेकिन हमारे जो
1: बस
0: साथी हैं, सखियां हैं,
1: बहुत
0: तो वो बताएं कि ये सब चीजें जो मैंने नाम ली है, सबने
1: हुआ।
0: आसपास देखी भी है, तो खाई भी है ना, अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, तो किसके किसके मुंह में पानी आया ये बताएं, है ना। और
1: बिल्कुल
0: हमारे साथी लिखते, मुंह में पानी आना हिंदी साहित्य में मुहावरों का एक विशेष स्थान है। ये हमारी भाषा को सुंदर, सजीव और असरदार बनाते हैं। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय और मजेदार मुहावरा है, मुंह में पानी आना। और इस मुहावरे का सीधा संबंध हमारी जीभ, स्वाद और मन की इच्छा से है। और
1: बिल्कुल
0: किसी भी पार्टी समारोह में, शादी ब्याह में जाते हैं, या फिर वो जमाना याद आता है पत्तल पे जो खाना परोसा जाता था, पंगत में हम बैठते थे, तो वहां पर सब चीजें देख के तो मुंह में पानी आता था। रायता आ गया या रसगुल्ला आ गया तो फिर पूछो मत, है ना। तो चलो आगे हमारे साथी क्या लिखते हैं।
1: हाँ, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि इस मुहावरे का अर्थ है किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर या उसके बारे में सोचकर मन ललचा जाना। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी मनपसंद खाने की चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को संदेश मिलता है और मुंह में लार बनने लगती है। इसी स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया को भाषा में एक खूबसूरत मुहावरे का रूप दिया गया है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस मुहावरे का प्रयोग अक्सर करते हैं
0: बिल्कुल,
1: कि
0: देखते
1: आपके
0: हैं
1: समाज चीज को देखिए, इतना अच्छा आपने रेसिपी बनाई है कि एकदम मुंह में पानी आ गया। नहीं
0: या बगल वाला कुछ बना रहा हो, उसकी महक दूसरे के उसमें घुस जाए, घर में इसकी
1: हाँ
0: नाक में वो सुगंध लेके, आप भाभी जी आपने बहुत अच्छा बनाया था, और मुझे तो लग रहा था कि बस खाने को मिल जाए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया था। ऐसी बातें भी होती है। और हमारे साथी लिखते हैं, मुंह में पानी आना मुहावरा हमारी सहज मानवीय प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अच्छी चीजों को देख कर उसका मन मचल ही जाता है। और ये मुहावरा हमारी आम बोलचाल को सरल, रोचक और जीवंत भी बनाता है।
1: बिल्कुल। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये हिंदी भाषा का बहुत ही अच्छा मुहावरा है और इसका संबंध हमारे खाने पीने की इच्छाओं से है। और साथ ही उसके अभी इन्होंने पूरी लिखा हुआ ही चीजें लिखी हुई हैं कि किसी भी चीज के बारे में हम देखते हैं या सोचते हैं, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, मिठाई या अचार, इनको देख के हमारा जो दिमाग है वो प्रतिक्रिया करता है और तुरंत हमारे मुंह में पानी आ जाता है।
0: भाई देखो, ये चाट पकौड़े ये सब जब जाते हैं ना मेले ठेले में, जिसे कहते हैं
1: हाँ
0: बाजार में, तो ये सब चीजें देख के तो बिल्कुल पानी आना स्वाभाविक ही होता है। और मुंह में पानी आना ये मुहावरा लालच या इच्छा जैसी अमूर्त भावनाओं को एक शारीरिक क्रिया के माध्यम से बेहद सरलता से व्यक्त करता है। इसका प्रयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं है, किन किसी भी आकर्षक वस्तु, धन या अवसर को देकर पैदा होने वाले लालच के लिए इसका खुलकर प्रयोग होता है। सरल शब्दों के कारण ये आम बोलचाल से लेकर साहित्यिक रचनाओं तक में समान रूप से बिल्कुल फिट बैठता है। और हम सोचते हैं, यहाँ पर हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: चाहेंगे, जैसे हम विविध भारती के परिसर में आए, बहुत सारी चीजें आपने देखी, कुछ रेडियो
1: मेरी यादें हैं उसकी बात है तो देखिए, मैं बोर्डिंग स्कूल निकल गया था तीसरी क्लास से ही
0: जी,
1: तो उतना ज्यादा रेडियो से नाता नहीं रहा, लेकिन जब मैं छुट्टियों में आता था तो मुझे याद है हमारे घर में, मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों में, लेकिन जो म्यूजिक बजता था वो रेडियो पर बजता था आमतौर पे, या कैसेट प्लेयर्स होते थे उस जमाने में, तो वो भाई बहन वो चलाते थे। और रेडियो मुझे याद आता है कि अम्मी हमारी जो है ना वो गुनगुनाती थी हल्के हल्के,
0: कुछ भी काम करते हुए वो यादें हमेशा बरकरार रहती
1: हैं। तो वो एक बड़ी मीठी याद है कि अम्मी काम कर रही हैं और कुछ गुनगुना रही हैं, पीछे कहीं रेडियो बज रहा है और साथ साथ वो भी गुनगुना रही हैं। तो वो अम्मी से बहुत ज्यादा रिश्ता जुड़ा है रेडियो और गानों का, तो वो मेरी बहुत मीठी याद है बचपन की। और अब जो है वो गाड़ी में खास तौर से मैं रेडियो बहुत सुनता हूँ, और उसके अलावा घर पे कभी कदार चलता है। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जिस पर आप गाने सुनते हैं
0: जी।
1: लेकिन जो एक
0: सफर का साथी,
1: हाँ सफर का साथी जो है, और एक क्लासिकल जो गाने जो हैं जिनसे कि बहुत गहरा मरासिम है, वो विविध भारती जैसे चैनलों पर मिलता है। और पुराने गाने हों चाहे नए गाने, वो खास तौर से पुराने गाने जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, वो ऐसे चैनलों पर ही सुनने को मिलता है, और मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा।
0: नॉस्टैल्जिया की बात की तो आपके बचपन से शुरुआत करते हैं, आपने कहा ही बहुत कम उम्र में आप हॉस्टल चले गए थे, घर का परिवेश कैसा था? और स्कूल के दौरान या उस वक्त हॉस्टल की यादें तो खैर खूबसूरत रहती है, हमेशा याद रहती है, बट एक्टिंग का क्या तभी से आपने सोच लिया था अभिनय में जाना है, या तब तक किस तरह से आपका झुकाव इस तरफ हुआ, या घर से कैसा योगदान मिला?
1: मेरे पूरे खानदान में किसी का किसी भी आर्ट फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहा।
0: अच्छा,
1: दूर दूर तक बिजनेस व्यवसाय जो है वो रहा है। हालांकि मेरे नाना और दादा दोनों इंडियन पुलिस सर्विस में रहे हैं, और अगर सर्विस क्लास जो रहे हैं वो पुलिस सर्विस से ताल्लुक रहा है। मेरे दादा का इंतकाल हो गया काफी जल्दी, वो जब स्कूल में थे तो उन्होंने पढ़ाई भी कर रहे थे और नौकरी शुरू कर दी
0: जी।
1: नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ये कालीनों का बिजनेस शुरू किया, पहले ट्रेडिंग से शुरू की
0: जी,
1: और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करने लगे। और एक्सपोर्ट करते करते ऊपर वाले का बड़ा करम रहा कि भदोही के टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स में उनका शुमार होने लगा।
0: क्या बात है।
1: अब मैं सुनता हूँ, ये सब मेरे बचपन की बात है, जो ये किस्से कहानियां फिर बाद में सुनता हूँ कि क्या जलवे थे मेरे फादर के
0: जी,
1: कि मुझे एक मेरे फादर भी 2009 में गुजरे, लेकिन उनकी मैयत में कब्रिस्तान हमारा अपना है, तो घर से कब्रिस्तान तक जो मैयत है ऐसे ही कांधे कांधे ही गई, चल नहीं पाई।
0: ये वो इज्जत है जो कमाई जाती है, वो प्यार है जो कमाया जाता है।
1: तो वहां से शुरुआत स्कूल से हुई मेरी, ड्रामे वगैरह करता था स्कूल में, और इस तरफ जाने का कोई इरादा ऐसा

0: नहीं था, प्रोफेशन बनाने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये था कि भाई शौकिया तौर पे कभी थिएटर वेटर कर लिया करेंगे, और ऐसे ही मेरे घर वाले भी समझते थे कि भाई चलो शौक है, कर रहा है, अच्छी बात है, किसी ने कभी रोका टोका नहीं, खासतौर से मेरे घर वालों ने तो कभी कोई तंज भी नहीं कसा
1: जी।
0: तो वहां से शुरुआत हुई और वहां से करते करते कॉलेज में आए, कॉलेज में भी किया, और मुंबई यूनिवर्सिटी में जब आया तो यहां भी किया। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो जेईई का होता
1: जेईई
0: है
1: का,
0: उसमें जब नहीं हुआ मेरा, तब मैंने पलटी मारी। मैंने कहा अब हो गई पढ़ाई साइंसेस वगैरह की, अब जो मजा आता है जिसमें वो करते हैं, तब इस तरफ झुकाव हुआ। और इसी मकसद से ही मैं बॉम्बे आया। बीए कंप्लीट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया, शेवुड कॉलेज नैनीताल से मैंने स्कूलिंग की 3 से 12 तक
1: जी,
0: और फिर यह एमयू से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया मैंने
1: जी।
0: तो बॉम्बे आने का मकसद थिएटर करना था।
1: थिएटर था, और थिएटर जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो वो जरूर मिलती है। तो मुझे लगता है आपने जैसे जिक्र किया कि आप नसीरुद्दीन शाह जो है उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे कभी मिलने की तमन्ना थी, और यहाँ पर शायद वही ख्वाब खींच कर लेकर आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनका साथ मिला मुझे, और शुरुआती दौर में ही मिल गया मुझे, वरना उन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम होता
1: जी।
0: है। तो मैंने भी शुरुआत उनके साथ वहीं से की कि छोटे मोटे रोल क्राउड व्राउड में ऐसे वैसे करते करते, फिर उसके बाद बड़े रोल मिलना शुरू हुए
1: जी।
0: और मेरा सबसे अहम काम जो उनके साथ रहा है वो 2 प्रोडक्शन जो मुझे खास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, वो है मंटो इस्मत हाजिर हैं, और उसके बाद एक था कथा कोलाज।
1: कथा कोलाज के बारे में काफी सुना है
0: जी। तो नसीर भाई तो एक लिहाज से मेरे उस्ताद रहे हैं, और काफी कुछ सीखा है उनसे, और अभी भी सीख रहे हैं। ज्यादा उसके अंदर न जाते हुए मैं कहूंगा कि इंसान के तौर पे और नजरिए के तौर पे, उनके साथ अभी थिएटर तो नहीं करता मैं, 2009 के बाद छोड़ दिया था मैंने, लेकिन काफी कुछ मुतासर करने वाली शख्सियत है वो।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: यहाँ पर हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं, तो आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवाएं।
0: अगर बहुत पुराने दौर में जाएं तो मेरे ख्याल में मुगले आजम का वो गीत प्यार किया तो डरना
1: क्या, प्यार किया तो डरना क्या, आइकॉनिक गीत
0: जी।
1: बिल्कुल सुनवाते हैं वो गीत।

0: बात करते हैं लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये दोनों कैसे चली, पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहाँ आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो जो भी चीजें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नजर किया मैंने, जैसे कि मैं डबिंग्स करता था अंग्रेजी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हो या अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी
0: जी।
1: और मेरी पकड़ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में, और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की, वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नजरिए से। और वो यही आता था तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीजें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का जरिया देखा जाए। और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं, और लोगों से काम मांगना आता नहीं था, वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट, मैं ईगो तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे,
0: आज भी नहीं है,
1: आज भी वो हिचक है मेरे अंदर की लोगों से काम मांगने का
0: जी।
1: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं, कि आपका काम पसंद करता हूँ और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं। बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए। खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहां देखा, समझा, बुलाया और काम से काम मिलने लगा। तो मैं कहूंगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय है वो थिएटर को दूंगा अपने करियर,
0: वो एक नींव है
1: जी,
0: जहां से सब चीजें शुरुआत
1: जी,
0: होती
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं
1: जी। तो हाँ, वही एक शुरुआत और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने, वो सब थिएटर के जरिए बने। लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके
0: जी।
1: तो करना चाहिए थिएटर में, उन्होंने देखा सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज ए वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू, और फिल्मों में भी उसी से ही रास्ते खुले।
0: हाँ। अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
1: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
0: क्या बात है, क्या पसंद है सुनवाते हैं गीत
1: जी।

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है
1: जी।
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी जरूरी है
1: जी।
0: तो ये जो एक लंबी फहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे
1: जी।
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूँ मैं
1: जी।
0: एक तो जहाँ से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म से
1: जी।
0: हम दिल देते
1: हैं,
0: रामलीला भी उनके साथ हुई, और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर
1: जी।
0: बिल्कुल अलग किरदार, और एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही
1: जी।
0: लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग
1: जी।
0: तो क्या डिफरेंस है, और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए, कुछ ऐसा आप साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, संजय भंसाली जो है वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर है और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत रिच होता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है, वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी।
0: बिल्कुल जी, तो लार्जर देन लाइफ,
1: लार्जर देन लाइफ
0: जी।
1: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है, खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में
0: जी।
1: और उनका तरीका जो है वो वही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जिस तरीका का कैनवस वो पेंट करते हैं, वो हर चीज में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है, और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनका हर चीज में होता है, और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूजिक कंपोज भी करते हैं अब तो,
0: बिल्कुल,
1: और बाकी तमाम चीजें तो है ही। तो उनका जो अंदाज है वो काफी नपातुला है, और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो दो टेक लगे चाहे 200 टेक लगे,
0: अच्छा,
1: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते
0: जी।
1: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं
0: जी।
1: कि जो उनको वो चीज दे सके, और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो बात अलग है कि अगर

0: आप एक्टर अच्छे नहीं है तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज भी है
1: बिल्कुल।
0: और अनुराग का जहां तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है और वो रियलिज्म में ज्यादा घुसता है। तो अनुराग उस लिहाज से अच्छा है कि वहां पर भी आपको अच्छे एक्टर की जरूरत पड़ेगी
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है।
1: स्पॉन्टेनियस,
0: हाँ स्पॉन्टेनियस बिल्कुल। और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए कुछ अच्छी अच्छी मैजिकल चीजें भी मिल जाती हैं उसमें। कभी कभी अच्छी चीजें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो फर्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
1: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें जिसको बहुत तैयारी की जरूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
0: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
1: श्रीकांत में आपने काम किया?
0: श्रीकांत, हाँ श्रीकांत में कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टफ था
1: जी,
0: क्योंकि एक तो उम्र ज्यादा और क्या कहते हैं ऐसी शख्सियत जो बहुत ही अजीम बहुत ही महान शख्सियत और अब भी सबने देखा है,
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ,
0: सुना है देखा है
1: बिल्कुल,
0: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था और मुश्किल आई पेश। लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की।
1: अच्छा,
0: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर, मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है,
1: हाँ, हाँ।
0: एक तो साउथ इंडियन और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेजी भी, क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे
1: बिल्कुल,
0: तो अंग्रेजी का इस्तेमाल भी था तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो ये मैनेज हो जाएगा
1: जी।
0: लेकिन हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था और थोड़ा मुझे डराया भी उसने।
1: अच्छा, ज्यादा तैयारी के साथ उतरे आप।
0: हाँ।
1: आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
0: चिंगारी कोई भड़के।
1: क्या बात है, आपकी पसंद बिल्कुल सुनवाते हैं गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है। गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार, अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है?
1: बहुत ज्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं, उसकी जो एपिसोड्स आएंगे।
1: जी, दो चीजें देखिए उसमें, शुरू में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया,
1: घर का हिस्सा हो गया। और मेरे लिए भी एज ए कैरेक्टर
0: जी
1: अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई है, जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान। ये मेरी नॉर्मल जबान है,
0: बिल्कुल
1: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा, स श ज ज, और मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी जाती जिंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की जिंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूँ कि काफी समृद्ध परिवार से हूँ और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी
0: जी,
1: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल जिंदगी क्या है,
0: क्या है, बिल्कुल
1: क्या
0: चुनौतियां हैं,
1: क्या चुनौतियां हैं। तो उतार में वो उसका एहसास हुआ, खास तौर पे जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास वो इमोशन वहां से आता है। और किरदार के अंदर कैसे क्या डाला गया, वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहां से उठाई हुई चीजें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं हैं तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है।
1: जी जी, और आंख कान खुले रखना ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें, वो जखीरा बनता है आपका, कब क्या चीज की जरूरत पड़ जाएगी आप वहां से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
0: और यहाँ पर मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा कर, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है? क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक, ये भी एक सीख देता है, तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है?
1: बहुत ही इमोशनल है क्योंकि मेरे फादर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इंसान को कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। बड़ी छोटी

0: की बात है, मैं घर गया हुआ था, मुंबई आने की तैयारी में था, सामान वामान पैक कर रहा था, तो ट्रेन का टाइम हो गया था, तो अब्बू आए कहने कि अरे जल्दी करो ट्रेन छूट जाएगी, और मेरे क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी पैक करवा रही थी, ये वो ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अब्बू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाई मत, वो जो शब्द था ना,
1: बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है।
0: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से हमेशा।
1: बिल्कुल।
0: और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है, और मैं यही कहूंगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं, और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की जरूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
1: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ अ सी ऑफ लाइट्स,
0: राइट,
1: उसके बारे में कुछ बताइए, वहां का माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहां पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइज, जिसमें वेस्टेज ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा, और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ। हर आदमी अब काम से काम रखता था, और वक्त पर पहुंचता था, वक्त से काम होता था, और वक्त पे खत्म भी हो जाता था
1: जी।
0: तो वो एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो वहां पर ज्यादा दिखी मुझे। तो फर्क ये इतना सा है, और बेसिकली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैं कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है
1: जी। और कोई, अभी हमने थिएटर की बात की, हमने एड्स की बात की, फिल्मों की बात की, और कौन सा रास्ता जहां पर अभी आपको जाना है कि ये भी ट्राई करना है, इस तरफ भी जाना है, और आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें?
0: कोई ऐसा, मतलब थिएटर वापस करना चाहूंगा मैं, कोई कमाल की चीज आई मेरे सामने। तो उसके अलावा किरदार बहुत सारे हैं हमारे समाज में भी और हमारी कहानियों में भी, जिनको मैं करना चाहूंगा, जो कि अब गुल्लक से बेहतर फादर तो मुझे नहीं लगता, फादर का रोल मुझे शायद मिल पाएगा, अगर कोई लिख पाए उससे बेहतर तो मैं जरूर करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ बाप के रोल तो मुझे नहीं करने हैं कि भाई फला के बाप है कर लिए, मैं सैकड़ों मना कर चुका हूं, मना करता रहूंगा उसको
1: जी।
0: लेकिन उससे अलग कलर कुछ हो, कुछ अलग जॉनर के किरदार हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मच्योर लव स्टोरी में करना जरूर चाहूंगा, तो हाँ वो एक डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में है।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो चीज की ख्वाहिश आप कर रहे हैं वो जरूर आपको मिले। अभी क्या आने वाला है, किसका इंतजार हम करें?
0: अभी कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक फिल्में हैं, सूरज बड़जत्या साहब के साथ एक फिल्म है, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस किया है मैंने, और एक फिल्म जो कर रहा हूँ, जुगाड़ू नाम की एक फिल्म है, वो बावेजा फिल्म्स और टिप्स की है, और अभी बाकी जो वेब शोज में से तो कुछ एक तैयार हैं, लेकिन वो कब आएंगे मुझे नहीं मालूम, वो डेट अनाउंस होंगे तभी पता चलेगा
1: जी।
0: और कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो मैंने की हैं, एक अंग्रेजी में भी की है, तो वो हैं दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, एक अंग्रेजी फिल्म है इंडिपेंडेंट फिल्म, और बाकी कमर्शियल फिल्म्स भी हैं, और वेब शोज में से तो गुल्लक का सीजन 6 आएगा अगले साल,
1: उसका इंतजार रहेगा हमें,
0: वो साल के आखिर में वो शूट करेंगे हम लोग, अभी लिखा जा रहा है वो
1: जी।
0: तो यही सब है, और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे अच्छे किरदार आए, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह
1: हमें भी इंतजार रहेगा
0: जरूर।
1: आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं उस बारे में बताइए।
0: मेरे बचपन में एक गाना मैं ऐसे शौकिया तौर पे बहुत गाया करता था, बच्चन साहब मेरे काफी फेवरेट रहे हैं, तो वो फिल्म मैंने न जाने कितनी बार देखी है, अमर अकबर एंथनी
1: जी,
0: तो उसका अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा होती नो, अमर अकबर एंथनी,
1: बिल्कुल सुनवाते हैं गीत।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाक्य मुझे याद आता है कि आप एक ही स्कूल से हैं बच्चन साहब, जहाँ से पढ़े हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई में, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी, बच्चन साहब शेवर्ड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी
0: जी।
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने की थी उसमें हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद एक ऐड भी किया हमने साथ में और उन्होंने पहचान लिया, जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले
0: जी,
1: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल पाल गए होंगे, लेकिन उन्होंने, उनका बड़प्पन कि डायरेक्टर से बात हो रही थी वो गणपत के सेट पर भी, तो तपाक से गले लगाया उन्होंने मुझे कि यू डूइंग वंडरफुल वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। तो जाहिर है बच्चन साहब है, तो बच्चन साहब से जाहिर है एक क्योंकि स्कूली नाता भी है और उनको आइडियलाइज भी किया, उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं
0: जी,
1: तो एक तरीके से बहुत बड़े आइडल है हमारे। उनकी तमाम फिल्में देखी हैं मैंने और बच्चन साहब से मिलके हमेशा अच्छा लगता है। बच्चन साहब, जैसा कि मैंने कहा कि वो ऐसी शख्सियत है कि वो रूम में दाखिल होते हैं तो हर आदमी न चाह के भी खड़ा हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और लेजेंड है वो। तो बच्चन साहब

0: बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है।
1: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
0: जी,
1: वो बताना चाहेंगे? तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
0: जी,
1: कभी कभी मजेदार भी होती है
0: जी, जी।
1: उस बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ, वो चोट मुझे आई थी, दरअसल एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो तीन पहिए के रिक्शे वो होते ना सामान रखने वाले, तो वो एक रखा हुआ था। तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया। फिर उसके बाद वो रिक्शा वहां पर पड़ा, मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहां से छलांग मार के निकलता हूँ। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं, मजा आएगा। तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है, एक और करते हैं। वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है,
1: एक और।
0: हाँ, तो सर एक और करते हैं
1: जी,
0: मतलब मुझे ऐसा मजा आ रहा है, कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया तो मैंने छलांग और ऊंची लगा दी। और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुआ था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पांव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
1: फिसल गया
0: और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई पहली, लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया। ऐसा नहीं कि वहां मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया और एक चढ़ान था ऊपर, टीला सा था, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहां शॉट खत्म था। तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी। फिर जब मैं वापस आ रहा था वहां से, तो उसने तो देख लिया था शॉट मॉनिटर में, आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया।
1: बेहोश हो गए
0: कुछ ख्याल, एक मिनट के लिए बेहोश रहा हूँ मैं, फिर होश आया तो करें सर, उसने मुझे फिर उसके बाद लिटाया वटाया तो पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉट दिखाया उसने कि सर देखिए ऐसे हुआ था, ये वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी और लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन एक हल्का सा एक लिम्प है।
1: अच्छा।
0: हाँ, कुछ एक सीन में
1: अब हम देखेंगे फिर से गौर से।
0: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे, क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी
1: जी जी जी,
0: तो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं वो सब मुझे होना था, लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए, और वो ऐसे क्या कहते हैं सरिये निकले हैं और बांस वास निकला हुआ है दुकानों का घरों का, और जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर से चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ उसको पहलवान को, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सरिये वगैरह निकले हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा, तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई, वो इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस, और जब वो गुजर गया फिर वापस आया, तो वो
1: एक रिफ्लेक्स,
0: हाँ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची। लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन, कि आप एकदम टू बी इन द मोमेंट, कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में,
1: बिल्कुल,
0: और एकदम रियल तरीके से, कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप,
1: बिल्कुल।
0: अब उसकी शॉट रोक नहीं दिया, अरे वहां से रोको यार भाई, नहीं आ रहा है तो ठीक है डील करो ना उससे,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वही है सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है,
1: बिल्कुल। कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते जिस तरह से जो आ रहा है उस तरह से?
0: बेसिकली देखिए मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना, जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कुछ बोलती है, और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे
1: जी।
0: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना, बगैर बोले बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, तो न बोल के भी कन्वे करना, और एज एन एक्टर मुझे शब्द जो है जो अल्फाज है वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में, तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूं। और जहां तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज करने का, तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूं, और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूं
1: जी।
0: कुछ एक तरीके होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो मैं दुनिया को नहीं पता है, डायरेक्टर को नहीं पता है कि मेरी तैयारी क्या है, और उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है
1: जी।
0: और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं, कि आप अपनी जबान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज में या आप जो पहनावा

0: है आपका, उससे आपकी चाल बदल जाती है, आपका
1: आजकल
0: अंदाज बदल
1: वर्कशॉप्स भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से
0: जाता
1: पहले,
0: है। जी
1: तो
0: जी
1: गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
0: जी हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं, और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीजें, कुछ एक एक होता ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
1: जी
0: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने, क्योंकि नए नए थे सारे। और चलिए गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं, किया हुआ है काम, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु, इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है उस लिहाज से, तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपने आप एक दूसरे को समझना
1: जी,
0: क्योंकि एक परिवार है तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना, वो उस चीज की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी
1: जी,
0: वो वहीं से वो सुर बैठ गया। और फिर शूट करके टाइम तो और ज्यादा बैठ गया, फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने लगा।
1: बिल्कुल दौड़ने लगा और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पर एक गीत आपकी पसंद का।

0: गुल्लक में कितना स्क्रिप्ट का योगदान है, कितना इम्प्रोवाइजेशन है?
1: गुल्लक में स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा योगदान स्क्रिप्ट का ही है। अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते
0: जी,
1: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक पर्सनल टचेस की बात है तो कुछ एक चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं
0: जी,
1: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक मिली जुली एफर्ट है। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट निहायत ही अच्छी होती है।

0: लकी। और मुझे लगता है कि इसी वजह से भी, मैं ये तो नहीं कहूँ इसी वजह से ही, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो स्क्रिप्ट को जाता है गुल्लक के कामयाबी
1: और गुल्लक ने घर घर में जो आपको पहचान बनाई है आपकी,
0: में।
1: उसके बाद ऐसा कुछ फैन मोमेंट जो आपको याद आता है, संतोष मिश्रा के नाम पर आपको पहचाना गया कहीं, इस तरह का
0: जी
1: कुछ फैन मोमेंट?
0: हाँ, देखिए बहुत सारा काम रहा है मेरा थिएटर में। जो पहली पहचान थिएटर से मिली, लेकिन
1: जी
0: वो आपको मास पहचान नहीं मिलती है बॉम्बे के बाहर या थिएटर सर्किट के बाहर। कुछ एक फिल्में आई उसके बाद जो बहुत मकबूल हुई, लोग उससे याद करते थे, इज्जत भी करते थे, और काम के लिहाज से कि भाई ये एक मजबूत एक्टर है, वो एक इमेज बन गई थी। लेकिन गुल्लक से मुझे जो फर्क जो महसूस होता है वो है पॉपुलैरिटी के अलावा एक जो मोहब्बत मिलती है ना, और जो इज्जत मिलती है, और जो अपनाइयत मिलती है, और दिल से
1: बिल्कुल
0: बनावटी नहीं, वो गुल्लक ने जरूर दिया है मुझे। और इसको लेके जो भी मिलता है बड़ी मोहब्बत से मिलता है, और वो ऐसा मिलता है जैसे संतोष मिश्रा उनके अपने हो,
1: बिल्कुल
0: चाहे वो भाई के तौर पे मिले, चाहे बेटे के तौर पे मिले, चाहे बाप के तौर पे मिले। बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो देख के मिलते हैं, या कभी ऐसा तो कहते हैं यार किरदार हो तो ऐसा हो।
1: एक एयरपोर्ट का किस्सा आपने साझा किया था, उस बारे में कुछ बताएं।
0: हाँ, वो भी देखिए ये बेइंतहाई मोहब्बत की बात है कि एयरपोर्ट पे मैं था और एक शख्स सामने से आए वो, और मेरे पांव छूने लगे, तो मैंने उनको उठाया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए आप, तो वो गले लग गए, और गले लगे रहे काफी देर तक। और फिर उसके बाद जैसे ही अलग हुए वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम थी, और बस थैंक यू कह के चले गए।
1: मुझे लगता है ये अवार्ड से भी कहीं गुना
0: जी
1: ज्यादा
0: जी जी
1: ये नवाजा जाता है इस प्यार
0: जी
1: से।
0: जी जी और कमाल की चीज है वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ कि यार ये तो एक एकदम स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स आपके गले लग जाए और फिर उसके बाद इतना इमोशनल हो जाए और कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह के चला गया वो।
1: बिल्कुल। और एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष मिश्रा स्क्रीन पर और आप में कितनी कितना मिलता जुलता है, आप घर पे कैसे हैं?
0: देखिए मैं मस्तीखोर तो हूं, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये राइटर्स भी जो हैं मुझे देख के काफी कुछ लिखते हैं कि किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है।
1: जी
0: लेकिन संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो बर्ताव है संतोष मिश्रा का,
1: जी
0: बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूं मैं, तो मैं हर इंसान को लेके कोशिश करता हूं कि उसको समझूं, जटिल न रहूं इस बात का कि मैं सोच रहा हूं या समझ रहा हूं वही सही है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नजरिया, और दूसरे की जगह खड़े होके या दूसरे की जगह अपने आप को डाल के रख के इस
1: उस
0: बात को समझना कि
1: दृष्टिकोण से देखना।
0: हाँ कि ये जो सोच रहा है या कह रहा है या कह रही है इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: और मस्तीखोरी तो भरी है मेरे अंदर, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूं, और मैं सीरियस कम रहता हूं लाइफ में, और जिंदगी को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली स्ट्रेस नहीं लेता मैं, और स्ट्रेस देता भी नहीं मैं। बहुत सादगी से और बहुत ईमानदारी से और इस तरीके से काम भी करता हूं कि किसी को मेरी वजह से कोई दुश्वारी पेश ना आए,
1: बिल्कुल
0: कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, या कोई कोई एज नहीं रहते मेरे कि कोई होता है ना कि भाई एक एरोगेंस हो या कोई ऐसा, भाई कम में भी काम हो जाता है, इतना
1: जी
0: कुछ करने की जरूरत नहीं है।
1: जी
0: स्टारपना नहीं दिखाता मैं कभी भी, सादगी से
1: चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्यार भरा संदेश जो आप देना चाहते हैं।
0: यही कहूंगा कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जितना अमन से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के, कभी छोटा भाई बन के तो कभी बड़ा भाई बन के, एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़े,
1: जी
0: इसी में हम सबकी भलाई है।
1: बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

लॉयड के सितारे। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5 बजे हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी श्रोता स्वीकार करिए उनके रेडियो से की शिल्पा का सप्रेम नमस्कार। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छी होंगी, अपने परिवार के साथ बेहद खुश वे आनंद से होंगी, साथ ही नियमित रूप से सुन ही रही होंगी जानकारी वे मनोरंजन से भरपूर आपका अपना प्रोग्राम महिला जगत। मैनो दुनिया के हर इंसान को प्रकृति ने एक समान उपहार दिया है, दिन के 24 घंटे। चाहे वह कोई महान वैज्ञानिक हो, सफल उद्योगपति हो या एक आम छात्र, समय सबके लिए बराबर है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इसी समय में असाधारण सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ व्यस्त रहने का नाटक करते रह जाते हैं? और जब हम किसी काम को पूरा नहीं कर पाते या अपने लक्ष्यों से चूक जाते हैं तो हम सभी अधिकांश लोगों का एक ही बहाना होता है, मेरे पास टाइम बहुत कम था, मेरे पास टाइम ही नहीं था। किसी रिश्तेदार से पूछो, बहुत दिनों से मिलने नहीं आए,

नहीं की तो जवाब, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों से अच्छे नंबर ना आने पर पूछो तो जवाब, मुझे टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, मैं अच्छे से पढ़ ही नहीं पाता। क्या बहनों, वाकई हम सभी के पास समय की कमी है? भटक रहा है राही मंजिल की आस में, खोया है आज का मानव समय के इस प्रयास में। कहता है हर शख्स यहाँ, समय नहीं है पास मेरे, पर झांक के देखो खुद में, क्या साफ है लक्ष्य तेरे। मैनो वास्तव में हम सभी के पास समय की कमी नहीं है, कमी है प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की स्पष्टता की। जब हमारे जीवन में लक्ष्य साफ नहीं होते तो समय बेकार की चीजों में बर्बाद होने लगता है और हमें हर काम के लिए समय कम पड़ने लगता है। वास्तव में हमारा समय क्यों कम पड़ता है, इस सवाल का जवाब हम खोजें तो पहला कारण निकलता है अस्पष्ट प्राथमिकता है। जब हमें यह नहीं पता होता कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है तो हम जरूरी कामों को टाल देते हैं। जीवन के प्रति हमारे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा कारण है सोशल मीडिया। फोन पर स्क्रॉलिंग करते हुए और फालतू के कामों में हमारा कीमती समय कब निकल जाता है हम जान ही नहीं पाते। नतीजा, जरूरी कामों को करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। मैनो, जब तक हम अपने 24 घंटों का हिसाब नहीं रखेंगे तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि हमारा समय कहाँ नष्ट हो रहा है। घड़ियां टिक टिक चलती हैं, पर मन में एक धुंध छाई है। कैरियर, पढ़ाई और परिवार में बस मची एक आपाधापी है। समय की कमी नहीं है, ये तो स्पष्टता का अभाव है। जो थाम न सके अपनी प्राथमिकताओं को, ये उस मन का स्वभाव है। सुबह उगती है नई किरण लेकर, पर योजना कोई पास नहीं। किसी काम को पहले करना है इसका कोई एहसास नहीं। फोन की आभासी दुनिया में घंटों यूं ही बह जाते हैं, फिर दिन ढलने पर खुद को ही हम हारा हुआ पाते हैं। जी हाँ बहनों, अगर आपको लगता है कि आपके पास अपने महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए समय नहीं है तो सबसे पहले आप एक हफ्ते तक ट्रैक करें कि आपका समय कहाँ जा रहा है। सोशल मीडिया, रील देखने में या फालतू की गपशप में जो एक दो घंटे आपके बर्बाद हो रहे हैं उन्हें काटकर आप अपने जरूरी काम पूरे करें। अपने लिए, अपनों के लिए समय निकालने के लिए ना कहने की आदत भी डालें। हर सामाजिक कार्यक्रम या दोस्तों की हर महफिल में जाना जरूरी नहीं है। इसी तरह ऑफिस में भी अतिरिक्त काम के लिए ना कहना सीखें। जब आपके पास काम का दबाव है तो विनम्रता से मना करना भी सीखें। समय की कमी को दूर करने के लिए बहनों प्राथमिकताएं तय करें। हर काम जरूरी नहीं होता, दिन के 2-3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को चुनें। आज नहीं कल की प्रवृत्ति को बदलें। जो काम जरूरी है उन्हें कल के लिए टालना बिल्कुल सही नहीं है। दिन में कुछ घंटे स्क्रीन से दूरी बनाएं। आप पाएंगे कि आपके पास काफी समय बचने लगा है। बहनों, वर्तमान पल में जीने की कोशिश करें। जब आप काम में पूरी तरह डूबकर करते हैं तो समय का दबाव कम महसूस करते हैं। ठहरो जरा, एक सांस लो, उस धुंध को अब छटने दो। क्या जरूरी है जीवन में सबसे, उस बात को मन में सजने दो। जब इरादे होंगे साफ तुम्हारे तो समय भी झुक जाएगा। जो खोया था इस उलझन में वो हर लम्हा थम जाएगा। कैरियर की सीढ़ी भी चढ़ोगे और परिवार का भी साथ होगा। जब स्पष्टता होगी जीवन में तो समय सदा तुम्हारे साथ होगा। जब स्पष्टता होगी जीवन में तो समय सदा तुम्हारे साथ होगा। जी हाँ बहनों, वास्तव में समय की संभावनाएं सीमित होती हैं, लेकिन हमारे भीतर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता होनी चाहिए। फिलहाल हम भी समझते हैं समय का इशारा, वक्त हो चला है आपके मनोरंजन का, तो बातों को देते हैं यही विराम और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका

0: समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहनों, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और खाद्य उत्पादन के स्तर तथा पोषण संबंधी कमियों को दूर करने की सीमा के बीच एक मजबूत संबंध देखा जाता है। फिर भी यह पाया जाता है कि कई विकसित और विकासशील देश ऐसे हैं जिनमें कुपोषण की समस्या व्याप्त है। हमारा देश भी उनमें से एक है जहां बच्चों व गर्भवती स्त्रियों में कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है। संतुलित आहार और अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भारत में हर साल 1 से 7 दिसंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। बात करें इसके इतिहास और शुरुआत की, तो इसकी वैश्विक शुरुआत सबसे पहले 1973 में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन द्वारा की गई थी। भारत में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा वर्ष 1982 में इसे पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। मैंने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, लोगों को दैनिक जीवन में पोषक तत्वों, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स के महत्व को समझाना, साथ ही देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया, खून की कमी की दर को कम करना। जंक फूड की जगह हमें पारंपरिक, जैविक और संतुलित भारतीय भोजन को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। मैनो, अगर हम जीवन के सुखों का आनंद लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें इसके लिए जरूरी है कि हम संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए बहनो हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बात करते हैं कुछ पोषक तत्वों के बारे में। प्रोटीन, इसका मुख्य स्रोत होती है दालें, पनीर, दूध, सोयाबीन, अंडे। प्रोटीन क्या करता है कि प्रोटीन हमारी मांसपेशियों का निर्माण और कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट, इसका प्रमुख स्रोत होती है आप साबुत अनाज, आलू, चावल का प्रयोग कर सकती हैं। शरीर को दैनिक कार्यों में ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। विटामिन व मिनरल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए, इसके लिए ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। इसका कार्य क्या होता है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हेल्दी फैट, नट्स, बीज, घी, सरसों का तेल इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। यह मस्तिष्क के कामकाज और विटामिन अवशोषण में मददगार होता है। फाइबर, आप फाइबर के लिए सलाद, दलिया, फल का सेवन कर सकते हैं। यह हमारे पाचन तंत्र और पेट को दुरुस्त रखता है। मैंने पोषण के स्तर को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कई राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे पोषण अभियान, आंगनबाड़ी सेवाएं, मिड डे मील योजना। और बात करें हम पोषण सप्ताह की थीम की, तो इसकी थीम है पोषण की शक्ति की खोज करें। मैंने स्वस्थ रहने के लिए अपनाए स्वस्थ जीवन शैली, खाने में शामिल करें पोषक तत्वों को, जंक फूड को दूर रखें अपने परिवार से। फिलहाल जानकारी के क्रम में इतना ही। वक्त हो चला है आपके मनोरंजन का, तो सुनते हैं एक और गीत।

मैनू जब मैं छोटी थी ना तब अपनी मम्मी की चूड़ियों से बहुत खेला करती थी। उन चूड़ियों को पहनकर घूमना, उनकी खन खन की आवाज मुझे बहुत ही भाती थी। और जब वो चूड़ियां पुरानी हो जाती थी तब वो फेंकी नहीं जाती थी, वरन उनसे बनाई जाती थी बहुत ही खूबसूरत और घरेलू उपयोग के सामान। मैंने कांच, धातु या प्लास्टिक की रंग बिरंगी चूड़ियों से कई तरह के आकर्षक क्राफ्ट तैयार किए जा सकते हैं। तो बहनों तैयार हो जाइए आप सब भी क्राफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि आज हम मिलकर बना रहे हैं पुरानी चूड़ियों से क्राफ्ट। सबसे पहले आप पुरानी चूड़ियों से वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। हमें क्या करना है, हम चूड़ियों के ऊपर रंग बिरंगे ऊन या सिल्क थ्रेड को लपेट कर और उन्हें आपस में जोड़कर बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। या फिर आप उन चूड़ियों पर एक बहुत ही आकर्षक या सुंदर सा कपड़ा लपेटिए, उस पर छोटे शीशों को सजा कर आपस में अच्छे शेप में जोड़कर भी आप वॉल हैंगिंग बना सकती हैं। ऐसे वॉल हैंगिंग देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और आपके घर की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 5-6 चूड़ियों को एक के ऊपर एक फेविकोल या ग्लू गन की मदद से चिपकाकर एक छोटा सा बेलनाकार स्टैंड बना लें। इसके बीच में अगर आप मोमबत्ती या दिया रखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लाइटिंग इफेक्ट देता है। और भी बहनों त्योहारों के दिनों में आप क्या कर सकती हैं कि पुरानी चूड़ियों को आपस में सुई धागे या रिबन से बांधकर बीच में गेंदे के फूल या आर्टिफिशियल मोती लगाकर

के दरवाजे के लिए तोरण भी तैयार कर सकती हैं। बहनों, पुरानी चूड़ियों से आप और भी क्रिएटिविटी कर सकती हैं। आप छोटे छोटे मिट्टी के गमले हैं आपके पास या प्लास्टिक के गमले हैं, उनके चारों तरफ चमकीली रंगों वाली पुरानी चूड़ियाँ चिपका दें। इससे क्या होगा, इंडोर गार्डन या बालकनी को एक बहुत ही नया और फ्रेश लुक मिलेगा। इसके अलावा आप चूड़ियों का उपयोग दुपट्टा ऑर्गेनाइजर के रूप में भी कर सकती हैं। आपको क्या करना है, एक कपड़ों वाले हैंगर में प्लास्टिक या मेटल की कुछ पुरानी चूड़ियों को रिबन या धागे से आप बांध दीजिए। अब आप इनमें दुपट्टा, स्कार्फ या टाई को लटकाकर अलमारी में व्यवस्थित रूप से रख सकती हैं। इसके अलावा बहनों, बहुत सारे उपयोग हम पुरानी चूड़ियों से कर सकते हैं। आप पुरानी चूड़ियों का उपयोग पर्दे के छल्ले के रूप में भी कर सकती हैं। पुरानी चूड़ियों से आप नई फैशन एसेसरीज भी बहुत आसानी से बना सकती हैं। पुरानी चूड़ियों पर लपेटे सिल्क का धागा लपेट कर उसे अपने मनचाहे तरीके से सजाएं। बन गई थ्रेड बैंगल्स। ये बैंगल्स आप अकेले भी पहन सकती हैं या 3-4 बैंगल्स को एक साथ चिपकाकर आप मोटा सा कड़ा भी बना सकती हैं। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और पहनने में भी। इस तरह बहनों, पुरानी चूड़ियों को फेंके नहीं वरन उनका करें अनेक तरह से उपयोग। कुछ उपयोग तो हमने आपको बता ही दिए हैं, इसके अलावा भी हम जानते हैं कि हमारी बहनों के पास और भी बहुत सारे आइडिया होंगे। तो करते हैं आज कुछ नया, कुछ शुरुआत करते हैं, कुछ क्राफ्ट करते हैं, तो कुछ नया ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल सोचिए कि आप क्या कर सकती हैं और सोचते सोचते सुनिए ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: बहनों, स्टूडियो की घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि मैं ले लूं आपसे जाने की अनुमति। जाते जाते बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगी, छोटी छोटी खुशियों को जीना सीख लें, छोटी छोटी खुशियों को जीना सीख लें, क्योंकि बड़ी खुशियों का इंतज़ार अक्सर ज़िंदगी गुजार देता है। इसलिए जीवन में जो भी आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिल रही हैं, उसे जिए और खुश रहिए। ज़िंदगी के इसी फलसफे के साथ दीजिए अपनी रेडियो से की शिल्पा को जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। संध्या के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त राजश्री शर्मा और आप सुन रही हैं आपका अपना कार्यक्रम युवाणी। चलिए आज की इस खूबसूरत सफर की शुरुआत अब शुरू करते हैं कुछ ऐसी बातों के साथ जो शायद आपके दिल तक भी पहुंचे। दोस्तों मन में ही हर दिन न जाने कितने विचार आते हैं। कुछ विचार हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बिना कोशिश किए ही हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। यही विचार धीरे धीरे हमारी सोच बनते हैं। हमारी सोच हमारे फैसलों को प्रभावित करती है और हमारे फैसले ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम बार बार यही सोचते रहें कि मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए ये मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, तो हमारा मन भी उसी बात को सच मान लेता है। लेकिन अगर हम खुद से कहें कि मुश्किल जरूर है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो हमारे अंदर से आगे बढ़ने की ताकत पैदा होती है। हमारी जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होती। कई बार मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती और कई बार बहुत से रिश्तों में परेशानियां आती हैं। किसी परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आता या कोई सपना पूरा होने में समय लग जाता है। ऐसे में हमारे विचार ही तय करते हैं कि हम रुकेंगे या फिर एक नई कोशिश के साथ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन में नकारात्मक विचार कभी नहीं आएंगे। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक होता है। हर इंसान

कभी ना कभी डरता है, परेशान होता है, खुद पर संदेह भी करता है, लेकिन उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने देना हमारे हाथ में है। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। हमें हर विचार को सच मानने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक छोटा सा सकारात्मक विचार भी हमारी पूरी दिशा बदल सकता है। किसी काम को शुरू करने का विचार, खुद पर भरोसा करने का विचार, अपनी गलती से सीखने का विचार, या फिर कल से थोड़ा बेहतर बनने का विचार, यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बनती है। इसलिए जब भी मन में विचार आए, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? क्या मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर कोई विचार हमें पीछे खींच रहा है तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए। अपने मन को ऐसी बात से भरिए जो हमको उम्मीद दे। खुद से कहिए कि हर समस्या का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आज अगर चीजें सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहेंगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और इंसान की मेहनत भी उसके जीवन में बदलाव ला सकती है। याद रखिए, जिंदगी की दिशा हमेशा किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, कई बार वे एक छोटे से विचार से बदलना शुरू होती है। इसलिए अपने मन में ऐसे विचारों को जगह मत दीजिए जो हमको हिम्मत ना दे। हमारी क्षमता हमारे विश्वास करने पर टिकी होती है, और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की अपने आप को प्रेरणा दे, क्योंकि विचार सिर्फ हमारे मन में उठने वाली बातें नहीं, यही विचार हमारे फैसलों को जन्म देते हैं, हमारे कदमों को दिशा देते हैं, और धीरे धीरे हमारे जीवन को कहानी, हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारा मन पसंदीदा फास्ट फूड पिज्जा की। कभी आपने सोचा है कि आज हमारी मन पसंदीदा फास्ट फूड डिश बन चुका है पिज्जा, आखिर आया कहाँ से? आज दुनिया के लगभग हर कोने में पिज्जा आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसका सफर काफी दिलचस्प रहा है। पिज्जा की कहानी हमें इटली से जोड़ती है, खासकर नेपल्स शहर से। हालांकि रोटी पर अलग अलग चीजें रखकर खाने का चलन इससे काफी पहले भी कई सभ्यताओं में मौजूद था। प्राचीन समय में लोग सपाट रोटी पर तेल, मसाले और दूसरी चीज डालकर खाते थे, लेकिन जिस पिज्जा को हम आज पहचानते हैं उसका आधुनिक रूप इटली में विकसित हुआ। 18वीं और 19वीं सदी में नेपल्स के आम लोगों के बीच पिज्जा काफी लोकप्रिय हुआ। उस समय ये बहुत साधारण भोजन था। आटे की पतली रोटी के ऊपर टमाटर, चीज और कुछ मसाले लगाए जाते थे। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ सस्ता भी था, इसलिए आम लोगों के लिए ये जल्दी और आसानी से मिल जाने वाला खाना बन गया। पिज्जा से जुड़ी एक मशहूर कहानी इटली की महारानी मार्गरीटा से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 1889 में नेपल्स के एक पिज्जा बनाने वाले ने महारानी मार्गरीटा के सम्मान में ऐसा पिज्जा तैयार किया जिसमें टमाटर, मोज़रेला चीज और बेसिल का इस्तेमाल किया गया। इन तीनों के रंग इटली के राष्ट्रीय ध्वज लाल, सफेद और हरे से मिलते थे। इसी से जुड़ा नाम पिज्जा मार्गरीटा बना। हालांकि इस कहानी के कुछ हिस्सों का इतिहासकार पूरी तरह से प्रमाणित नहीं मानते, लेकिन ये किस्सा पिज्जा की लोकप्रिय पहचान का हिस्सा जरूर बन चुका है। इसके बाद पिज्जा का सफर इटली से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा। खासकर अमेरिका में जाकर पिज्जा ने एक नया रूप ले लिया। वहां अलग अलग तरह के टॉपिंग्स, मोटे वेस और अलग अलग स्टाइल के पिज्जा लोकप्रिय होने लगे। धीरे धीरे पिज्जा सिर्फ इटली या अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में लोगों की पसंद बन गया। भारत में भी पिज्जा ने अपना एक अलग अंदाज बना लिया। यहाँ पनीर, कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज और कई तरह के मसालों के साथ साथ देसी स्वाद वाली टॉपिंग्स देखने को मिलती थी। यानी पिज्जा ने जिस देश में कदम रखा वहां के स्वाद अनुसार अपना रूप बदल लिया। दोस्तों यही तो खाने की खासियत होती है, एक साधारण सी डिश भी अलग अलग संस्कृतियों और स्वादों के साथ जुड़कर बिल्कुल नया रूप ले सकती है। तो अगली बार जब आपके सामने गर्मा गर्म चीज से भरा पिज्जा आए तो सिर्फ उसके स्वाद का मजा मत लीजिए, एक पल के लिए तो उसके लंबे सफर को याद कीजिएगा और एक साधारण सी रोटी से शुरू हुआ सफर जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय फूड्स में शामिल हो चुका है। दोस्तों ये था हमारे पिज्जा का सफर। और आज है मंगलवार, तो आज हम सुनते हैं थीम सॉन्ग। तो सुनिए ये गीत और पता लगाइए हमारी आज की थीम का।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और

0: मुआवजा भी दिलवाएगा, समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: दोस्तों सही पहचाना, आज की थीम है नशा। नशा सिर्फ किसी पदार्थ का नहीं होता, नशा तो सपनों को पूरा करने का भी हो सकता है। दोस्तों अगर नशा करना ही है तो अपनी मेहनत, अपने जुनून और अपने लक्ष्य का नशा कीजिए। ऐसा नशा कीजिए जो हमको गिराए नहीं, बल्कि हर दिन आगे बढ़ाए। मोबाइल की स्क्रीन या गलत संगत में नहीं, अपने हुनर और भविष्य में समय लगाइए, क्योंकि असली नशा वही है जिसका असर हमारी सफलता में दिखाई दे। तो आज एक नशा चुनिए कुछ कर दिखाने का। दोस्तों अब सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, नशा करना है तो कामयाबी का कीजिए, हर मुश्किल में खुद पर एतबार कीजिए, जो ख्वाब देखे हैं उन्हें हकीकत बनाइए, गलत नशे से नहीं अपने जुनून से पहचान बनाइए। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों इसी खूबसूरत सोच के साथ आज की इस बातचीत से मुझे दीजिए इजाजत। जुड़ी रहिए युववाणी के साथ, सुनती रहिए और मुस्कुराती रहिए। मैं फिर लौटूंगी एक नई बात और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है, एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजे हैं। कुछ ही क्षणों में श्रोताओं, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ

0: जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
1: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं सरकार ने कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारी आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण व उनका प्रसारण समय इस प्रकार से है। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे संध्या 6:10 पर और संध्या 7:30 पर। रात 8:15 पर आप आनंद लेंगे लोक संगीत का। आप सुनिए हमारे जयपुर केंद्र से रिले कार्यक्रम। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी व राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। संध्या 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। आप सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे रात 8:45 पर और रात 11:00। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा रात 9:00। आज हमारे प्रसारण समाप्त होंगे रात 11:05 पर।

अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण व उनका प्रसारण समय। कल हमारे प्रसारण आरंभ होंगे प्रातः 5:53 पर। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन व चिंतन। प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झरोका रामचरितमानस गान। आप सुनेंगे प्रातः 6:35 पर। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर। प्रातः 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे प्रातः 7:30 पर, संध्या 6:10 पर और संध्या 7:30 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे सवेरे 8:15 पर। सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम महिला जगत कार्यक्रम। श्रोताओं आप सुनेंगे संध्या 5:05। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर। संध्या 7:00 आप

जयपुर केंद्र से रिले कार्यक्रम कल हिंदी में प्रादेशिक समाचार श्रोताओं आप सुनेंगे सवेरे 9 बजे, दोपहर 1 बजे और संध्या 6:30 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे संध्या 6:45 पर। अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा प्रातः 6 बजे, सवेरे 8 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 2:15 पर, संध्या 6 बजे, रात 8:45 पर और रात 11 बजे। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम श्रोताओं कल आप सुनेंगे सवेरे 9:10 से। कल हमारे प्रसारण समाप्त होंगे रात 11:05 पर।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। संध्या के 6:10 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। पहला नगमा हमने लिया है बेनी दयाल की आवाज में हॉलीडे फिल्म से। गीत रचना है इरशाद कामिल की और संगीत दिया है प्रीतम ने।

ममता शर्मा और सुखविंदर सिंह की आवाज में हाउसफुल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। अगला नगमा हमने लिया है मोहम्मद रफी की आवाज में हमसाया फिल्म से। गीत लिखा है सहवान रिजवी ने और संगीत दिया है ओपी।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में हंगामा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी व राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ शिखर सम्मेलन में संबोधन, आतंकवाद के इकोसिस्टम और फंडिंग को ध्वस्त करने का आह्वान। जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए नई दिल्ली में आज से दो दिन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। प्रदेश में किसी भी जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन और कक्षाओं का उपयोग नहीं करने के निर्देश। और मलेशिया में संपन्न लैक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक। टीम में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र की 9 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आयोजित सम्मेलन में श्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और फंडिंग को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंडों को खारिज करने की बात कही। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। ये किसी देश के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने एससीओ को लेकर भारत की सोच साझा की। उन्होंने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी अपनी दो दिन की

0: किर्गिस्तान यात्रा पूरी कर बिश्केक से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने पर देशवासियों को बधाई दी।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी एफआईआर बंद करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस अवधि के प्रदर्शन से जुड़ी कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में मौजूद 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है, जिन पर पहले से ही संगीन आपराधिक मामले हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने ये आदेश दिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
0: देश में जल संरक्षण और बेहतर जल प्रबंधन के लिए आज से नई दिल्ली में 2 दिन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन में जल सुरक्षित भारत बनाने की दिशा में चर्चा की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और विभागों के अधिकारियों को एक मंच पर लाया गया है। उनके साथ बेहतर जल प्रबंधन के लिए कार्य प्रणालियों और चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन में जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन और जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन सहित अन्य विषयों को भी शामिल किया गया है। मंत्रालय की इस पहल से विभागीय शिखर सम्मेलन से सहकारी संघवाद और साझा जिम्मेदारी की भावना को और मजबूती मिलेगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि सम्मेलन से राजस्थान की जल सुरक्षा पर भी मंथन कर रोड मैप तैयार किया जाएगा।
3: जल संसाधन और हमारे जो पीएचडी विभाग है, इसको किस तरह से बेटर क्रियान्वयन के साथ हम आगे बढ़ा सके, उस पर मंथन होगा। इसके अलावा हमारी जो राजस्थान की भरत परियोजनाएं, चाहे हमारे वो ईआरसीपी हो, चाहे हमारी यमुना हो, चाहे हमारी जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे जैसे काली तीर हो, पीपलकोट हाई लेवल हो, इस तरह की जो बड़ी परियोजना है उसका प्रेजेंटेशन भी हम इसके अंदर देने वाले हैं। इस तरह से हर राजस्थान के अंदर वैसे भी पानी की कमी है और हमारी जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें केंद्र का सहयोग भी अपेक्षित है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे राजस्थान की जरूरतें हैं हम बेहतर तरीके से केंद्र के सामने रखने का हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 10,245 वार्डो के लिए 53,700 से अधिक प्रत्याशियों ने 65,000 से ज्यादा नाम निर्देशन पत्र भरे। सबसे अधिक 3,800 से ज्यादा पर्चे जयपुर जिले में भरे गए। नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक

दलों और तीसरे मोर्चे के प्रत्याशियों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। विभिन्न स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी मुकाबलों को त्रिकोणीय बना रही है। कई जगह बागी उम्मीदवारों को मनाने की कवायद भी की जा रही है। 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निकाय चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जैसलमेर और पाली सहित विभिन्न स्थानों पर 2 दिन की ये ट्रेनिंग शुरू हुई। इस बीच नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गतिविधियों का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आज अजमेर में स्वीप टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा। बालोतरा में खेल खेल में मतदान का महत्व बताया जा रहा है, इसके लिए रोचक सांप सीढ़ी पोस्टर तैयार किया गया है। उधर कोटपुतली के गंगा सागर तालाब पर भी मतदाता जागरूकता के लिए दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में किसी भी

टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा। बालोतरा में खेल खेल में मतदान का महत्व बताया जा रहा है, इसके लिए रोचक सांप सीढ़ी पोस्टर तैयार किया गया है। उधर कोटपुतली के गंगा सागर तालाब पर भी मतदाता जागरूकता के लिए दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में किसी भी जर्जर और असुरक्षित विद्यालय भवन और कक्षा कक्षों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विद्यालय भवनों की सुरक्षा को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संस्थान भवनों की सुरक्षा की सतत निगरानी और नियमित परीक्षण करने को कहा। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में पीने के साफ पानी की उपलब्धता पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि प्रदेश के 65,000 से ज्यादा स्कूलों का तकनीकी सर्वेक्षण करवाया गया है। इनमें 3,000 से ज्यादा जर्जर भवन और 83,000 से अधिक जर्जर कक्षा कक्ष चिन्हित किए गए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनकी उपयोग पर रोक लगाई गई है। साथ ही प्रभावित विद्यालयों के संचालन के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है। श्री यादव ने बताया कि आईआईटी जोधपुर और जयपुर के एमएनआईटी के विशेषज्ञों की टीम द्वारा सरकारी स्कूल भवनों की स्वतंत्र तकनीकी सुरक्षा जाँच की जा रही है। मलेशिया में संपन्न लेक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। कुआलालंपुर में भारत ने शुरुआती मुकाबले में मेजबान मलेशिया को हराया। इसके बाद फिलीपींस को भी मात दी। कांस्य पदक के लिए भारतीय टीम का सामना सिंगापुर से हुआ। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम क्षणों में सिंगापुर को 10-9 से पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय टीम में कप्तान डाली गमेटी सहित उदयपुर और जनजातीय क्षेत्र की बेटियों का अहम योगदान रहा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तिरंगे की शान बढ़ाने वाली भारतीय महिला लैक्रोस टीम को बधाई।

0: अलवर जिले के 368 करोड़ 19 लाख रुपए के 90 कार्य शामिल रहे। उन्होंने अलवर सरस डेयरी के 3 लाख लीटर क्षमता वाले प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया। अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की घोषणा की। कार्यक्रम में किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। जिले में 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य समारोह हुआ। इस समारोह में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 24 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे पहले जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की धूम रही। जगह जगह तिरंगा प्रभात फेरियां निकाली गईं और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में जयपुर से वर्चुअल माध्यम से ई बस सेवा की शुरुआत की। अलवर में इस दौरान 5 ई बसों को रवाना किया गया। जिले में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। बाकी बसें चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। जिले में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। जनाना अस्पताल स्थित संपूर्ण स्तनपान प्रबंधन केंद्र में कार्यशाला, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी तथा रैली के माध्यम से स्तनपान के बारे में जानकारी दी गई। प्रसूताओं, धात्री माताओं और उनके परिजनों तथा चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ को भी जागरूक किया गया। श्रावण के महीने में जिले के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के कार्यक्रम हुए। अलवर शहर के त्रिपुलिया मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की कतारें नजर आईं। रक्षाबंधन का पर्व भी जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे और भाइयों ने बदले में उन्हें उपहार दिए। वहीं ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर विशेष नमाज अदा की गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। नागरिक सुरक्षा तैयारियों के तहत अलवर की एक हाई राइज बिल्डिंग में मॉक ड्रिल की गई। बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर आग लगने की स्थिति में राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। इसी के साथ अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद रा इकोसिस्टम और फंडिंग न खत्म करन री अरज कीनी। पानी बचावन और इनरा बेहतर प्रबंधन रवाना माय विचार करण सारू। नई दिल्ली माय आज 2 दिन रो शिखर सम्मेलन सारू भियो। प्रदेश माय जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवन और कक्षा काम नी लेवन रा हुकम दिया चिया। और मलेशिया माय भी लेक्रोस चैंपियनशिप माय भारतरी महिला टीम कांसा रो तमगो जीतियो। टीम माय राजस्थान रा जनजातीय हलकारी 9 खिलाड़ियां रो शानदार प्रदर्शन। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ कड़ो संदेश दिनो है। किर्गिज गणराज्य री राजधानी बिश्केक में रखी जा सम्मेलन में श्री मोदी आतंकवाद रा इकोसिस्टम और रकम री सप्लाई बंद करन री अरज कीनी। प्रधानमंत्री सगला सदस्य देशाओं आतंकवाद रे खिलाफ दौड़ा मानदंडा न खारिज करन बाबत कहो। वह जोर देर कहो कि आतंकवाद इंसानियत सारू गंभीर चुनौती है जो किनी देश री रणनीतिक संपत्ति नि फै सके है। प्रधानमंत्री कहो कि युद्ध और लड़ाई रो हल बातचीत और कूटनीति रे जरिए ही वेवणु चाहिए। वह कहो कि भारत बाजारा न जोड़बा, कारोबार न बधावो देवन वाली और विकास रा नुआ गेला खोलन वाली सगली कोशिशां री हिमायत करे है। सम्मेलन पाछे प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन री किर्गिस्तान यात्रा पूरी कर और बिश्केक नई दिल्ली सारू रवाना भे गया। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री चालू माली साल री पहली तिमाही माए देश री जीडीपी

0: बढ़ोतरी री रेट 7.8% रहवण परा जनता ने बधाई दीनी।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: सुप्रीम कोर्ट 20-25 जुलाई बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दा न लेर विद्यार्थियों कान्यू करी जा प्रदर्शन जुड़ी सगले FIR बंद करण सागे एड़ा मामला में आगे जांच नी करण रो हुकम दीनो है। अदालत राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशों ने ई मियाद माय करी जा प्रदर्शन जुड़ी कोई नई FIR दर्ज नी करण बाबती कहो। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ जंतर मंतर सामी प्रदर्शन में मौजूद 2873 जना रा खिलाफ जांच जारी रखने री मंजूरी दीनी है, जहां रा खिलाफ पहले ही संगीन आपराधिक मामला दर्ज है। इबीचे केंद्रीय मंत्री JP नड्डा भरोसो दिरायो के नीट पेपर लीक मुद्दा न लेर प्रदर्शन करण वाला विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज मामला पाछा लेर वारे खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी जावेला।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
0: देश में पानी बचावण और इनरा बेहतर प्रबंधन सारू जल शक्ति मंत्रालय रे ओरू आज नई दिल्ली में 2 दिन रो शिखर सम्मेलन शुरू हुयो। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल बतायो कि सम्मेलन में न्यारा न्यारा राज्य और महकमारा अहलकारा सागे पानी रा बेहतर प्रबंधन सारू कार्य प्रणालियां और चुनौतियां रा हल नु जुड़ियो विचार करियो जा रियो है। सम्मेलन में विचार सारू पानी भेड़ो करण, जनतारी भागीदारी, कैच द रेन और जल जीवन मिशन 2.0 रा तहत पीवण रा पानी री पूर्ति जुड़ी योजनावां समेत न्यारा न्यारा मुद्दा शामिल करी चिया है। राज्य रा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बतायो कि सम्मेलन में राजस्थान में पानी री हिफाजत रे बारा में ही विचार कर रोड मैप बनायो जावेला।
3: जल संसाधन और हमारे जो PhD विभाग है, इसको किस तरह से बेटर क्रियान्वयन के साथ हम आगे बढ़ा सके उस पर मंथन होगा। इसके अलावा हमारी जो राजस्थान की बृहत परियोजनाएं, चाहे हमारे वो ERCP हो, चाहे हमारी यमुना हो, चाहे हमारी जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे जैसे काली तीर हो, पीपलकोट हाई लेवल हो, इस तरह की जो बड़ी परियोजनाएं उसका प्रेजेंटेशन भी हम इसके अंदर देने वाले हैं। इस तरह से हाँ, राजस्थान के अंदर वैसे भी पानी की कमी है और हमारी जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें केंद्र का सहयोग भी अपेक्षित है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे राजस्थान की जरूरतें हैं हम बेहतर तरीके से केंद्र के सामने रखने का हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सारू उम्मीदवार कानून दाखिल करी जिया नाम पाना री आज जांच करी ची। राज्य निर्वाचन आयोग रे मुजब 10,245 वार्डा सारू 55,072 उम्मीदवार 66,692 पर्चा दाखिल कीना। सबू बत्ता 3,800 ज्यादा नाम पाना जयपुर जिला में फरीचिया। इस आगे उम्मीदवार का न्यू जनसंपर्क रो काम तेज करती हो चियो है। भाजपा और कांग्रेस समेत न्यारी न्यारी सियासी पार्टियां रा उम्मीदवार सागे निर्दलीय उम्मीदवार री मौजूदगी मुकाबला न रोचक बना रही है। कई थोड़ा बागी उम्मीदवार री मान मनवल री कवायदी करी जा रही है। 3 सितंबर न दोपहर 3 बजे ताई नाम पाछा लिया जा सकेला। ये पाछे राज्य निर्वाचन आयोग री ओरों उम्मीदवार न चुनाव चिन्ह आवंटित कर न्यारा न्यारा हल्का में वोट

9 और 11 सितंबर न पड़ेला निकाय चुनाव प्रक्रिया ठीक तरीकों करावन सारू चुनाव ड्यूटी माए लगायोड़ा कर्मचारियां न सिखावन दी जा रही है। आज पाली माए दो दिन रोज सिखावन शिविर सरू फियो ए बीच नगर निकाय चुनाव माए जनता री बत्तियों बत्ती भागीदारी तय करण सारू चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान रा तहत न्यारा न्यारा आयोजन रखा जा रहा है। आज अजमेर माए स्वीप टीम री ओरों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखी जियो। कोटपुतली रा गंगा सागर तलाव माए दिया जलावन रो कार्यक्रम रखी जियो है। बालोतरा माए रोचक सांप सीढ़ी पोस्टर रे जरिए खेल खेल माए वोट देवन रो महत्व बतायो जा रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश माए पड़बारी शंका वाला और असुरक्षित स्कूल भवन और कक्षा कक्ष काम नी लेवन रा हुकम दीना है। मुख्य सचिव स्कूल भवन री हिफाजत रे बारा माए आज जयपुर माए राखी जी मीटिंग माए बोल रिया है। वे उच्च शिक्षा विभाग रा एहलकारा ने संस्थान भवन री हिफाजत जुड़ी लगातार निगरानी और जांच करावन सारू कहो। श्री वी श्रीनिवास स्कूला माए पीवन रो साफ पानी मुहैया करावन माथे खास जोर दिनो। मीटिंग माए स्कूल शिक्षा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव बतायो के प्रदेश री 65,032 स्कूला रा तकनीकी सर्वे माए 3,032 जर्जर भवन और 83,032 पड़बारी हालत वाला कक्षा कक्षा री पिछाण करी जी जान काम लेवन माथे रोक लगाती रिची है। श्री यादव बतायो के आईआईटी जोधपुर और जयपुर रा एमएनआईटी रा जानकारा री टीम कानियो सरकारी स्कूल भवन रे स्वतंत्र तकनीकी सुरक्षा जांच करी जा रही है। मलेशिया माए खेली जी लेक्रोस चैंपियनशिप माए भारत री महिला टीम कांसा रो तमगो जीतियो है। कुआलालंपुर माए भारत मेजबान मलेशिया ने हरायो इन पाछे फिलीपींस ने मात देर सिंगापुर ने 10-9 हरार कांसा रो तमगो जीतियो। भारत री ई जीत माए उदयपुर और आरएसआर रा जनजातीय हलका री बेटियां रो मोटो योगदान रह्यो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आ उपलब्धि हासिल करण सारू भारत री महिला लेक्रोस टीम ने बधाई और शुभकामनावां दीनी है। मारा संदेश माए राज्यपाल कह्यो के सीमित साधना रे बावजूद राजस्थान री बेटियां बेहतरीन खेल रो दर्शाव कीनो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई ई उपलब्धि सारू भारत री होशियार खिलाड़ियां री सराहना कीनी है। मारा संदेश माए मुख्यमंत्री कह्यो के जनजातीय हलका री खिलाड़ी मेहनत और जज्बाऊं देश और प्रदेश रो नाम रोशन कीनो है। केंद्र सरकार शक्कर री जमाखोरी और इणु जुड़ी सट्टेबाजी रोकण सारू शक्कर रा भंडारण री हद 4,000 क्विंटल घटार 2,000 क्विंटल कर दीनी है। नुवी हद ई महीनारी 15 तारीख हूँ 30 नवंबर ताई लागू रहवेला। उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रे मुजब नुआ नियमा रे तहत कोई कारोबारी स्टॉक मिलिया पाछे 30 दिनों बत्ता बगत ताई ते हदू बत्ते शक्कर नी राख सकेला। इसा गई सरकार दिसावरों बिना फीस मंगवाई जावन वाली कच्ची चीनी री प्रोसेसिंग और बिक्री री समय सीमा माई बदलाव की नो है। दिसावरों कच्ची शक्कर मंगावन वाला सारू खरीद री तारीख हूँ 2 महीना री मियाद माए इन सफेद शक्कर बनार देशी बाजार माए बेचनू जरूरी वेला। केंद्र सरकार कांदा रा सुरक्षित भंडार हूँ देश रा खास शहरा रा बाजारा माए प्याज री पूर्ति शुरू करती नी है। खाद्य मंत्रालय रे मुजब देश माए कांदा रा बधता मूल माथे काबू करण सारू कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियां और ट्रकां रे जरिए प्याज री पूर्ति करी जा रही है। मंत्रालय रे मुजब रेलगाड़ियां सा गई ट्रकां हुई करीब 1,000 मीट्रिक टन प्याज बाजारा माए भेजो जा रियो है। सरकार साफ कीनो है के बफर स्टॉक हूँ प्याज बाजार माए आया पाछे इनरा मोल माए कमी आवन लगी है और आवता दिना ओ और सस्तो फैला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज में तेजी जगह बना रही है। वह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT रा 66वां स्थापना दिवस समारोह में बोल रहा है। शिक्षा मंत्री कहो कि तेजी फेरिया तकनीकी बदलाव रे मुजब किताबा और कोर्स में बदलाव जरूरी है।
वे कहो के इनु विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समझण एर माने आत्मविश्वास सागे जिम्मेदारियों काम लेवण माय मदद।

0: मिलेला। आखिर में खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद रा इकोसिस्टम और फंडिंग न खत्म करन री अरज कीनी। पानी बचावन और इनरा बेहतर प्रबंधन रबारा माय विचार करण सारू। नई दिल्ली माय आज दो दिन रो शिखर सम्मेलन शुरू थियो। प्रदेश माय जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवन और कक्षा काम नी लेवन रा हुकम दिया जिया। और मलेशिया माय भी लेक्रोस चैंपियनशिप माय भारत री महिला टीम कांसा रो तमगो जीतियो। टीम माय राजस्थान रा जनजातीय हलका री 9 खिलाड़ियां रो शानदार प्रदर्शन। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनवा वाला सगला है तालवा ने जका दूर दराज गांव ढाणी रे मायने बैठे हुआ कार्यक्रम सुन रहे है। आप सगला है तालवा ने गणे मानसू प्रभु दयाल वर्मारो राम राम साय, और सागे सागे अदिति बहन ताने भी मोकलो मोकलो राम राम सा।
7: राम राम प्रभु भाई और सुन बाला सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
6: काई हाल चाल अदिति बहन?
7: बहुत बढ़िया हाल चाल, और बिरखा की रुत छे, चौमासो चाल रहो छे, पानी बरस रहो छे, और चारू मेर यहाँ लाग रहो छे कि पोषण ही पोषण अपनी जमीन ने मिल रहो छे।
6: बिल्कुल पोषण तो देखो अपनी जमीन ने जदी मिले चोखी बिरखा हुए, पण देखो अब खट्टे खट्टे जिया छांटा छिड़को हुए है, और कई जगह जिया छांटा छिड़को नहीं हुए तो अपनी फसलां है जकी भी बिरखा रे अभाव रे मायने जलवा भी लागण लाग रही है। पण जद पोषण री बात कर रहे हो तो देखो आपा आपनो स्वास्थ्य है चंगो बनायो राखने वास्ते आपने सोखी जी की खुराक है, खान पान रो अपन पूरो ध्यान राखन नो चाहिए
7: जी। और आप बार बात करबा की भी यही छे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1-7 सितंबर तक मनायो जावेलो, और हर चीज के पीछे ओकड़ा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होवे प्रभु भाई। तो ई राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के पीछे ओकड़े भी यही बात छुपियोड़ी है कि संतुलित आहार, पोषण स्वास्थ्य और कुपोषण से बचाव के प्रति आपने सब ने जागरूक रहना है।
6: बिल्कुल जागरूक रहना है, देखो अपन अच्छे स्वास्थ्य बना रखना है, अगर अपन स्वास्थ्य चोखो रे बोलो तो आप कोई भी काम करना बिके मायने अपन अच्छी तरीके सफलता अपन मिल सके है। जब आप स्वास्थ्य सागे नहीं है तो आप चाहे अपने कतो ही धन दौलत हुए, चाहे बाकी सारी चीजें हुए, लेकिन आप स्वास्थ्य सही नहीं हुए तो बाकी चीजों को आप लाभ नहीं उठा सका
7: जी। सा स्वास्थ्य नहीं सबसे मोटो धन भी कहो गयो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपकी बात सु सहमत छू। और सागे ही अगर आप बात करा आपने माटी की और आपने माटी की पोषण की, तो भी आपने बीच में जो विषय विशेषज्ञ
6: बिल्कुल

0: सही थे, मैं समझ रही हूँ था सर हो गए भाई। आप अपने स्वास्थ्य की बात करा भी यही देखो, अपने माटी है, अपनी यहाँ धरती माता है, इको स्वास्थ्य अगर चोखो रे लो तो देखो फसल चोखी मिल पाओली, और फसल चोखी मिल पाओली तो आपनों जो को किसान को जीवन स्तर है वो सीधो सीधो विषय जुड़ेड़ो है। तो अपने विशेष विशेषज्ञ अपने सागे स्टूडियो में मौजूद है सरिता चौधरी जी, तो बासू बातरी थे करो देगे आप और किसान भाइयों तक पूर्ति करवा।
1: श्रोताओं आज भारत आगे जानकारी देबा खातिर उपस्थित छह सरिता चौधरी जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान राजकीय कृषि महाविद्यालय मौजमाबाद जयपुर सु आप पधार्या और आज आप जानकारी लेवाला मृदा की सेहत, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान पे। पहली करा आपको स्वागत, राम राम सरिता जी।
2: राम राम किसान भाइयों।
1: सरिता जी सबसे पहली प्रश्न आ ही रहवेलो कि मृदा की सेहत या फिर आपा बोला कि मृदा को स्वास्थ्य छह कई।
2: स्वस्थ मिट्टी वो है जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ, उचित पीएच और संतुलित मात्रा में नत्रजन, पोटेशियम, फास्फोरस व सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हो, और उसके साथ साथ ही सूक्ष्म जीव भी उचित मात्रा में उपलब्ध हो। और मिट्टी की संरचना के बारे में हम बात करते हैं तो वो क्या है, मिट्टी की संरचना वह जिसमें पानी और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके, लेकिन लगातार एक ही फसल उगाने से और आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का उपयोग करने से, फसल अवशेषों का जलाने से जिससे जैविक पदार्थों की कमी हो जाती है और मृदा की गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो जाती है। मृदा का स्वास्थ्य वही है जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व हो और सूक्ष्म जीव भी उचित मात्रा में उपलब्ध हो।
1: जी आप बहुत ही बेहतर तरीके से सरल और सहज शब्द में आप माटी को स्वास्थ्य छह कई में समझाया। सागे ही आपसु या भी जानबो चावला कि जो माटी को स्वास्थ्य छह वह फसल उत्पादन सु किन भात को एक दूसरा सु संबंधित छह कहीं एक दूसरा ने प्रभावित भी करे छे वह बताओ सा।
2: जैसे जैसे हम फसल उत्पादन करते हैं उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, मिट्टी। मिट्टी में क्या चाहिए, पोषक तत्व। उसी प्रकार जैसे हम पोषक तत्व हम सप्लाई करेंगे उसी प्रकार से हमारे को प्रोडक्शन होगा। तो फसल उत्पादन के लिए हमारे को उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सभी उपलब्ध है, तो ये क्या करते हैं फसलों में, पौधों में उनके विभिन्न कार्य होते हैं, तो ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए इनकी जरूरत होती है। तो इनको अगर हम संतुलित मात्रा में देंगे तो क्या होगा, अच्छे से पौधे उनको अपटेक कर पाएंगे और इस प्रकार हमारा फसल प्रोडक्शन भी बढ़ सकेगा।
1: जी डॉक्टर साहब आप ये भी बताओ कि अगर भी माटी का स्वास्थ्य ने बेहतर बनावो चाहवा तो कहीं कर्सा बाहर बना बना सके छे।
2: हाँ मैडम जरूर हम बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के द्वारा हम इसको अच्छे से उपलब्ध बना सकते हैं। इस प्रकार जैसे हम ऑर्गेनिक सोर्स, कार्बनिक स्रोतों से, उर्वरकों से और वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन सब को हम सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा कि अच्छे से हम अप्लाई करेंगे तो पौधे सब चीजों को संतुलित मात्रा में उपयोग कर पाएंगे, तो जिससे क्या होगा पौधे अच्छा प्रोडक्शन देंगे।
1: जी सर। कर्सा बाहर बना आपने ऊपर छे कि माटी को स्वास्थ्य आपा कहीं बेहतर बनावा, सागे ही अगर संतुलित पोषण की बात करा तो संतुलित पोषण देखो सबने चाहे जे, अगर मानव छे तो मानव ने भी चाहे जे, आपना पशु छे वाने भी चाहे जे, सागे ही सागे अपनी माटी छे वाने भी संतुलित पोषण चाहे जे। तो संतुलित पोषण किन भात को आपा राखा जिसे समृद्ध फसल उत्पादन आपने मिल सके।
2: मृदा स्वास्थ्य को हम बेहतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ सबसे पहले हमारे को मृदा की जांच की आवश्यकता होगी, मृदा की जांच करना होगा। मृदा जांच के बाद हम उसमें संतुलित पोषण उपलब्ध करवाएंगे, फसल विविधीकरण को हम अपनाएंगे, हम उसमें कार्बनिक स्रोतों को अप्लाई करेंगे। इस प्रकार हम मृदा स्वास्थ्य को हम बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा जांच के बारे में। मृदा जांच से हमारे को पता लगेगा कि मृदा में कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है, कौन से की कमी है। अगर हमारे को पता लग जाती है मृदा में कि ये पोषक तत्व कम है तो हम क्या करेंगे उसको ही हम अप्लाई करेंगे। जैसे ऐसा मानते हैं कि जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो हम यूरिया अप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन अप्लाई कर देंगे, उसके बाद फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस अप्लाई कर देंगे, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम सप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे को जिस पोषक तत्व की जरूरत है हम वो पोषक तत्व उसके अकॉर्डिंग ही हम सप्लाई कर देंगे और

0: फसल उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं और उसके बाद हम जैविक स्रोतों को अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि जैविक स्रोत अप्लाई करेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीव है उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी और जो भी हम पोषक तत्व सप्लाई करते हैं वो पौधे ऐसे तो अपटेक नहीं कर पाते लेकिन उनको उनकी सरल अवस्था में सूक्ष्म जीव उसको उपलब्ध करवा देते हैं। इस प्रकार पौधे जो भी मिट्टी में उपलब्ध अवस्था में है अनुपलब्ध अवस्था में जो पोषक तत्व पड़े हैं उनको पौधों को सप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार हम मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक ये उपयोग कर सकते। दूसरा फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे फसल विविधीकरण क्या है, फसल विविधीकरण में हम गेहूं उगाते हैं, गेहूं के बाद हम दलहनी फसलें उगाते हैं तो क्या होगा, गेहूं जो ऊपर की जमीन है ऊपर की जो लेयर है मृदा की उसमें से पोषक तत्वों को अपटेक कर लेंगे और दूसरा दलहनी है वो जो लोअर डेप्थ है उसमें से पोषक तत्वों को उपलब्ध कर लेंगे। जैसे हम दलहनी की बात करते हैं तो दलहनी में क्या होगा, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है जैसे राइजोबियम है, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, तो इससे क्या होगा कि वो जो मिट्टी में अनुपलब्ध अवस्था में जो पोषक तत्व पड़े हैं उनको उपलब्ध अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम जो भी मिट्टी में जो पोषक तत्व जो अनुपयोगी है उनको हम उपयोगी बना सकते हैं और जिससे क्या होगा, उर्वरकों की लागत कम होगी, उर्वरकों की लागत कम होगी तो फसल उत्पादन की लागत कम होगी और किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। जैसे हम बात करते हैं दलहनी फसलों में, फसल विविधीकरण में दलहनी फसलें क्या करती है, उनमें हम राइजोबियम जीवाणु, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया एंड पोटेशियम घुलनशील जीवाणु अगर हम इनको उपयोग करते हैं तो जो भी मृदा में जो अनुपलब्ध अवस्था में जो पोटेशियम फॉस्फोरस पड़ा हुआ है उसको ये सूक्ष्म जीव उनको घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं, जिससे क्या होगा जो भी हमारे को उर्वरक की लागत होगी वो कम हो जाएगी, दूसरी जो किसान की फसल उत्पादन की लागत वो कम हो जाएगी, जिससे फसल उत्पादन हम बोल सकते हैं कि एक तरह से समृद्ध किसान तो वही आय का एक जरिया बन जाएगा। दूसरी चीज फसल विविधीकरण के बाद में हम बात करते हैं कि और किस प्रकार ये बेनिफिशियल है। हम फसल विविधीकरण में जो भी उर्वरक जो भी हम अप्लाई करते हैं जैसे दलहनी फसलें नाइट्रोजन का उपयोग खुद तो करते हैं लेकिन जो अगली फसल होगी उसमें भी वो उस नाइट्रोजन जो भी गांठों में जो नाइट्रोजन बनी है वो पड़ी रहेगी और अगली फसल में वो काम आ सकेगी। इसी में हम बात करते हैं मृदा संरक्षण। जैसे मृदा कटाव जो कि एक उर्वरक भूमि है उसका एक क्षरण कर देती है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं कि जैसे हम जो भी फैलने वाली फसलें हैं जैसे दलहनी फसलें, दलहनी फसलों को उगाने से जो भी मृदा हवा के द्वारा मृदा क्षरण होगा उसको हम बचा सकते हैं और पानी के कटाव द्वारा जो भी शुरू में जो पानी की बरसात की बूंदे पड़ती है उससे जो क्षरण होता है उसको भी हम उससे बचा सकते हैं। दूसरा जो भी नाइट्रोजन का वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो नाइट्रोजन का लॉस होता है उसको भी हम उसके थ्रू बचा सकते हैं। और हम बात करते हैं इसमें कि जो भी गेहूं के साथ वाली क्रॉप्स है जो भी फसलें हैं उनमें हम जो यूरिया अप्लाई करते हैं उसका क्या होता है कि ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, इसी प्रकार हमारे को ये संतुलित मात्रा में हमारे को सप्लाई करना चाहिए। संतुलित मात्रा में सप्लाई करेंगे तो सारे जो भी किसान की लागत है वो, और इसमें एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि कब हमारे को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने हैं, किस टाइम सही वक्त पे सही विधि से और सही समय पर हम इसको सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी हम उर्वरक और जो भी हम स्रोत हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगा उससे जो सही मात्रा में उसको अपटेक कर पाएगा और इससे उर्वरक की दक्षता बढ़ पाएगी और लागत में कमी आएगी।
1: श्रोताओं आपा जानकारी ले रहे हैं मृदा की सेहत, स्वस्थ मृदा स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान, और आपने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सरिता चौधरी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान राजकीय कृषि महाविद्यालय मोजमाबाद जयपुर सुहा पधार्या है। डॉक्टर साहब अगलो प्रश्न है कि संतुलित पोषण कताई किन भात का स्रोतों का उपयोग आपने करना चाहिए कर्जा बाहर बनाना, वह बताओ सर।
0: जी किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगी कि संतुलित पोषण में हम कार्बनिक स्रोतों उर्वरकों वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट हरी खाद इन सभी का

0: हम एक साथ उपयोग करेंगे, जैसे हम बात करते हैं फार्मयार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या होगा, इसमें कार्बनिक स्रोत ज्यादा होंगे। कार्बनिक स्रोत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उसमें मृदा की जो संरचना, जो भौतिक अवस्था है मृदा की, उसको भी सुधार में सहायता मिलेगी। भौतिक जो संरचना उस पर जनरली कम ही ध्यान जाता है। इससे क्या होगा कि जो पानी हवा का आवागमन है वो भी बाधित नहीं होगा। अगर हमारी भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था और जैविक अवस्था, तीनों अवस्था मृदा की अगर सही है तो मृदा स्वास्थ्य अपने आप ही बेहतर होगा। और संतुलित पोषण में हम बात करेंगे तो ये सभी जो मैंने स्रोत बताए उनका हम सही वक्त पे, सही विधि से और सही टाइम पे हम उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा जो भी उर्वरक हम अप्लाई करें हैं, जो भी स्रोत हम अप्लाई करें हैं, उनको प्लांट अच्छे से उपलब्ध कर पाएगा। तो हमारे जो नाइट्रोजन का क्षरण है, जो लॉस हो रहा है, वो नाइट्रोजन बचेगा। जो लीचिंग के थ्रू जो लॉस हो रहा है वो बच जाएगा। जो भी ताप की थ्रू जो नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है वो बच जाएगा। जैसे वनस्पतिक वृद्धि के समय नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो हम उसी टाइम पे नाइट्रोजन का अप्लाई करेंगे तो उसके साथ ही हम उसके अलग अलग अवस्था में स्प्लिट डोजेस, थोड़ी थोड़ी अवस्था में उसको हम सप्लाई करेंगे, जिससे जितना जरूरत होगी प्लांट को उतना ही वो मृदा से ले पाएगा।
1: जी सर, अगर बात करा सरिता जी मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन की, तो वह अपा किण भांति कर सका, जिसे की कर्सा बाहर बना की आय में भी वृद्धि होवे और अपना कर्सा बाहर बना को आर्थिक स्तर में भी वृद्धि होवे।
0: जैसे मैं इसमें बताना चाहूंगी आपको किसान भाइयों, जैसे हमारे को पता करना होगा कि मृदा में कौन से पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और कौन से पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित है। मृदा की अवस्था कैसी है, मृदा की कंडीशन कैसी है, हमारे को ये सब चीजें जानने के बाद ही हम बता पाएंगे कि मृदा में कौन से पोषक तत्व उचित है और कौन से कम है। अगर जो उचित है तो उनको हम कैसे पौधों को हम उपलब्ध करवा सकते हैं वैसे, और दूसरी चीज जो कम है उनको हम सप्लाई कर सके। और हम मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हमारे को मृदा के, जैसे हमारा जो स्वास्थ्य है, जैसे हम चिकित्सक के पास जाके हम चेक करवाते और पता करते हैं कि हमारे कौन सी बीमारी है, उसी प्रकार हम मृदा के स्वास्थ्य की भी हम जांच करने के बाद बताएंगे कि मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसी के अनुसार उसको हम ट्रीटमेंट देंगे। जैसे हम मान सकते हैं फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व अप्लाई करना और मृदा में जो सूक्ष्म जीव है, जो लाभकारी जीव है, वो क्या करेंगे, जो नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, उनको उपलब्ध मात्रा में फसलों को दे पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन, ये तो मुख्य पोषक तत्व हो गए, हम इनको तो अप्लाई कर दिए, क्योंकि हमारे को पता है यूरिया देना है, डीएपी देना है, एमओपी देना, ये सब हम अप्लाई कर देते। सूक्ष्म पोषक तत्वों की ओर ध्यान नहीं जाता। सूक्ष्म पोषक तत्व, क्योंकि ये भी जिस प्रकार 17 आवश्यक पोषक तत्व है, उसी प्रकार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जो भी द्वितीय पोषक तत्व है, इनको हम उतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही हमारे को सूक्ष्म पोषक तत्वों को देना चाहिए, क्योंकि ये भी फसलों में वही काम करते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व करते हैं, तो हम इनको नेग्लेक्ट नहीं करें। इसके लिए हमारे को जैसे जिंक, जो हम गेहूं में कभी कभी होता है कि गेहूं में दाने नहीं बन पाते, प्राकण नहीं हो पाता, तो उनमें क्या होगा कि बोरोन और जिंक की कमी होगी, वो हम जान नहीं पाते। किसान भाइयों, इसको जानने के लिए हमारे को मृदा की जांच करवानी चाहिए। मृदा की जांच के बाद उसी के अनुसार हमारे को उसमें कौन से तत्वों की कमी है वो देना चाहिए, कौन से सूक्ष्म जीव हमारे को देने चाहिए, उनको हम अप्लाई करना चाहिए। जिस प्रकार हम बात करते हैं सूक्ष्म तत्व, जो पॉलिनेशन, परागण और दाना बनने, इन सब में योगदान रखते हैं, उसी प्रकार हमारे को ये पोषक तत्व सही टाइम पे और सही समय पर हमारे को सप्लाई करना चाहिए, जिससे क्या होगा किसान की आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि मान लो नत्रजन हमने अप्लाई कर दी, वनस्पतिक वृद्धि हो गई, लेकिन क्या होगा जब बोरोन की कमी हो गई तो उसमें परागण नहीं होगा, परागण नहीं होगा तो दाना नहीं बनेगा। तो हमारे को वनस्पतिक वृद्धि तो मिल गई, हमारे को चारा तो मिल गया, लेकिन हमारे को दाना नहीं मिला, हमारे किसानों को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, जिससे क्या होगा किसान की आय में कमी आएगी। तो हमारे को क्या करना है, आय में वृद्धि करनी है, तो हमारे को ये चीजें ध्यान रखनी

0: आजकल तो बहुत सारी जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है जो, और अगर प्रयोगशाला आसपास नहीं है तो कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय में भी हम मृदा की जांच करवा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे को मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहिए, और वहां पे हम परीक्षण भी ले सकते हैं कि हमारी मृदा को हम कैसे सुधार सकते हैं। मृदा का स्वास्थ्य अगर खराब हो गया, जैसे उसमें लवणों की मात्रा बढ़ गई, तो हम क्या करें, कैसे उसको सही करें, उसके लिए भी अलग अलग स्त्रोत हम अप्लाई करेंगे। जैसे मृदा में लवणों की मात्रा बढ़ गई तो हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे और हम पता करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे सोडिक सॉइल हो गई जिसमें सोडियम लवण ज्यादा है तो हम उसमें जिप्सम की सप्लाई करेंगे जिससे जो बैलेंस है पोषक तत्वों का वो हो जाएगा, और इस प्रकार हम हमारी मृदा का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मृदा में अगर ज्यादा मात्रा में पानी है तो क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन का लॉस कर देगा, तो हमारे को उसका भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम मृदा में कितना पानी भरने दे, कितना किस टाइम पे हम पानी दे जिससे पानी की बचत होगी, क्योंकि ये भी तो एक लागत ही है, क्योंकि अगर लागत ज्यादा होगी तो नुकसान होगा। इस प्रकार हमारे को लागत कम से कम करने पे ध्यान देना चाहिए और सही टाइम पर सही समय हमारे को सही विधि से हमारे को पोषक तत्व उपलब्ध कराने चाहिए, और इस प्रकार हम हमारी मृदा का प्रबंध कर सकते हैं।
1: जी सरिता जी, चलता चलता आपका सा बाहर बनाना है, कोई संदेश देना चाहो तो बताओ सा।
0: हाँ जरूर, मेरा संदेश है स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल, समृद्ध किसान और समृद्ध भारत।
1: श्रोताओं अब आपा जानकारी लिया डॉक्टर सरिता चौधरी जी से। आप असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान राजकीय कृषि महाविद्यालय मौजमाबाद जयपुर स्वाप पधारे, और इतनी बढ़िया जानकारी मृदा की सेहत, स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान पर आप इतनी बढ़िया जानकारी दिया, इसके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हाँ तो भाई लोगों, आभार, थोड़ी देर पहले जानकारी आप तक पहुंचती हुई स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल और समृद्ध किसान, ये विषय पर जानकारी अपन सरिता चौधरी जी दे रहा और बातचीत आपने अदिति बहन जी कर रहा, तो बहुत ही चौकी जानकारी था तक पहुंचती हुई। अब देखो अपना जगह पावना पधारिया बने और मारे सागे अदिति बहन अन दुनिया ने मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद, और धन्यवाद स्वरूप अब बादवारो मीनो चलन लाग रहे है, सिंजर और टेम है, तो एक मिट्टी सी लोक रचना बाबारी आप लोगों तक पहुंचती हुई है, सा सुनो।

0: इमीट हसा लोक भजन के साग ही कार्यक्रम को बखत पूरो हुयो तो देव अदिति ने
1: और प्रभु दल ना आ गया
0: चालार करा राम राम सा।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 7:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। पहला नगमा हमने लिया है सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की आवाज़ में, परदेश फिल्म से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

माँ लक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाज़ में पटियाला हाउस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था अनविता दत्त ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लोय ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। अगला नगमा हमने लिया है अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में धड़कन फिल्म से। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में धूम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था प्रीतम ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। अगला नगमा हमने लिया है शान और कविता सुब्रमण्यम की आवाज़ में, दिल चाहता है फिल्म से। गीत रचना है जावेद अख्तर की और संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल की आवाज में फना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीत लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। अगला नगमा हमने लिया है वाजिद और ममता शर्मा की आवाज में दबंग 2 फिल्म से। गीत रचना है साजिद वाजिद की और संगीत भी है साजिद वाजिद का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। पेश है लोक संगीत, कलाकार हैं दुर्गा प्रसाद शर्मा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से, कलाकार है दुर्गा प्रसाद शर्मा व साथी।

और मिला आपके आवले संगठन की हड़, कि देशभक्ति का बुरादा पर उपकार के बीज, रहम दिल का छिलका, ये सातों मिला के चीज़।

कि इन सब को मिलाकर मन रूपी हांडी में डालकर इश्क इलाही के चूल्हे पर चढ़ाए और नीचे प्रेम की अग्नि जलाए कि पक जाने पर नीचे उतार ले और नेक नियति के कपड़े से छान कर चरित्र रूपी सीसी में भर ले क्योंकि ये शोध कर बनाए हुई और

कि प्रतिदिन एक एक तोला संतोष के गुलकंद में मिलाकर ईमानदारी की चम्मच से खाएं और क्रोध रूपी मिर्च अहंकार रूपी तेल और दुराचार रूपी मसाला न खाएं कि प्रतिदिन एक एक तोला संतोष के गुलकंद में मिलाकर ईमानदारी की चम्मच से खाएं क्रोध की मिर्च अहंकार का तेल और दुराचार का मसाला।

पूछेंगे कि ओ ये ओसी कहां से मिलती है, और देश विदेश जाने की जरूरत नहीं है, तो आपकी आत्मा से मिलती है। लेकिन थोड़ा सा कष्ट आपको भी उठाना पड़ेगा और मेरे बाबा श्री केशवनंदन जी के दरबार में जाना पड़ेगा कि आप पूछेंगे कि ये औषधि कहाँ से मिलती है और देश विदेश जाने की जरूरत नहीं है, तो आपकी आत्मा से मिलती है। लेकिन थोड़ा सा कष्ट आपको भी उठाना पड़ेगा और बाबा श्री केशवनंदन जी के दरबार

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भवानी ज्ञान बताइए सबसे पहले मना।

ये आकाशवाणी अलवर का सर्स का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। कुछ ही क्षणों में श्रोताओं, आप सुनेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे दुर्गा प्रसाद शर्मा वैसादी।

0: अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
1: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
4: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
5: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
1: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
2: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
1: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की

0: संपत्ति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9।

अब आपको सुनवाते हैं यशुदास और सुलक्षणा पंडित का गाया सावन को आने दो फिल्म का गीत। इस गीत के बोल माया गोविंद के हैं और संगीत है राजकमल का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और उषा तिमोती की आवाज में ये गीत, बोल कल्याण जी आनंद, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे समरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं, जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं बस वही एक चेहरा नजर आता है। इंसान के तमाम चेहरों में बस वही एक पहचाना सा चेहरा चारों ओर दिखाई देता है। जी चाहता है बस उसी का दामन थाम जिंदगी की राहों पर चलते रहें और जिंदगी का ये सफर कभी खत्म न हो।

पता था जुड़ेंगे दो दिलों के तार, किसे पता था दिल समंदर बन जाएगा, किसे पता था कि मिलेगा कोई साझीदार और बांट लेगा सारे गम और खुशियां। नरमो नाजुक रेशमी अल्फाज से जमाने की तलखी सोख लेगा। कहां पता था आंखों की नमी पर मुस्कानों के मोती सजा देगा। कहां पता था वो खुशियों के चांद को जिंदगी में धर देगा। नहीं पता था दो दिलों का, दो मौसम का, दो शहरों का चांद एक ही होगा।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झड़ जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहां छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते हैं।

आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 11 बजे हैं। श्रोता, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रही है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए

0: कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकंड यानी एक मिनट तक रह सकें।

ध्यान दे क्या दृश्य उपस्थित हो गया है। कन्हैया और मैया दोनों भाव विभोर होकर एक दूसरे के कंठ से लगे हुए अश्रुधार बहा रहे हैं। दोनों ही जानते हैं कि माखन खाया है और दोनों ही कह रहे हैं कि माखन नहीं खाया। जब कन्हैया ने देखा कि भोली मैया को अंत में मैंने मना ही लिया, तब कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी कर लिया। यही तो उसका नटखटपना है, यही तो उसकी लीला है।